हम आकाशवाणी उदयपुर FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.9 MHz पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं, हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी उदयपुर FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8 बजे तक के प्रसारणों के लिए हम जुड़ेंगे हमारी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। इस समय प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी इस वर्ष फरवरी में AI इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती,
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। सुकरात का ये कथन है कि संसार में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का सरल है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है वैसा ही अपने आप को व्यक्त करे। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 220। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाड़िक। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज आप सुनेंगे। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर। इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 9:30 पर होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप के सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। सुबह 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का और दिन में 2:00 सुनिए त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और दिन में 3:00 का समय है सखी सहेली इस कार्यक्रम का। शाम 4:00 सुनिए कार्यक्रम पिटारा। इसके अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा जीवन शैली और योग इस विषय पर योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5:00 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7:00 सुनिए कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में जिस फिल्म के गाने आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। रात 8:00 कार्यक्रम हवा महल झलकी नीम हकीम। इसके लेखक हैं राजकुमार वाल्टर और निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9:00 सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10:00 का समय छाया गीत कार्यक्रम का है और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11:00 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 220।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विफल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: कल हमने लोक संगीत में प्रचलित विभिन्न सारंगियों की बात की थी, आज हम शास्त्रीय संगीत में प्रचलित सारंगी के संबंध में विचार करेंगे। सच पूछा जाए तो सारंगी हमारी मूल्यवान और समृद्ध वाद्य संगीत परंपरा का परिचायक है। गज से बजाए जाने वाले वाद्यों में सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रथम सप्तक अचल थाट में, दूसरा सप्तक रागानुरूप और तीसरा सप्तक संवाद स्वरों में मिलाया जाता है। गायन में सारंगी की संगत से यदि वादक सुरीला हुआ तो जिस भरावट व आकर्षण की वृद्धि होती है वह अपने आप में अनुपम है। इसके आविष्कर्ता के संबंध में अमीर खुसरो, सारंग खान, मियाँ कल्लू खान, हकीम बकरात गो तथा रावण आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके गज का आकार धनुष के समान होता है और धनुष को सारंग भी कहा जाता है। इसीलिए यह भी संभव है कि धनुष से बजाए जाने के कारण इसका नाम सारंगी पड़ा हो। वर्तमान पीढ़ी के श्रेष्ठ सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने चर्चा के दौरान बताया कि एक जमाने में सारंगी को सौरंगी कहते थे और सौरंगी से बिगड़कर सारंगी नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके आविष्कर्ता के संबंध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने सारंगी का उल्लेख भिन्न भिन्न नामों से किया है किंतु विस्तृत वर्णन नहीं किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी तक यह अल्प रूप में प्रचारित हो चुकी थी। संगीत राज ग्रंथ के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह प्रचलित हो गई थी। यही कारण है कि आईने अकबरी और राग दर्पण ग्रंथों में सारंगी का वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में रचित राग दर्पण में सारंगी वादकों का वर्णन भी है। इसके अलावा संगीत नारायण ग्रंथ में सारंगी वीणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। आइए इस मधुर वाद्य सारंगी पर राग किरवानी सुनते हैं। कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खां।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अब हम सारंगी के आकार पर विचार करेंगे। सारंगी की लंबाई लगभग 2 फीट होती है। इसके नीचे वाले भाग को मंधान कहते हैं, जिसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है। घुरच अर्थात ब्रीच की व्यवस्था इसी मंधान में की जाती है। मध्य भाग को छाती अथवा गला कहते हैं। छाती की बाईं ओर 24 छोटी छोटी खुटियां तरबों के लिए लगाई जाती है। सबसे ऊपर वाले भाग को मगज कहते हैं, जिसमें दाएं बाएं मुख्य तार हेतु 2-2 बड़ी खुटियां और 11 तरबों हेतु छोटी खुटियां लगाते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य 4 तार और 35 तरबों के तार लगाए जाते हैं। वर्तमान में सारंगी वादक मुख्य 4 तार को सामान्यतः इस प्रकार मिलाते हैं। प्रथम तात का तार मध्य सप्तक षड़ स्वर में, दूसरा तात का तार मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में, तीसरा तात का तार मंद्र सप्तक के षड़ स्वर में और चौथा तार फौलाद का पंचम में अथवा मध्यम में राग के अनुसार मिलाते हैं। गज को दाहिने हाथ में पकड़कर तारों पर घर्षण किया जाता है। सितार, वायलिन आदि वाद्यों में स्वर उत्पत्ति हेतु अंगुलियों से तार को दबाया जाता है, जबकि सारंगी में स्वर निकालने हेतु अंगुलियों के नाखून का स्पर्श या घर्षण किया जाता है। भारतीय संगीत की सूत, घसीट, गमक, कर्ण, खटका, मुरकी आदि विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी सारंगी जितनी लोकप्रिय होना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उस्ताद बुंदू खां और पंडित राम नारायण जी ने सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हम पंडित राम नारायण जी के सारंगी का रसास्वादन करते हैं।

गजतत्वाद्य। गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक। प्रस्तुति

सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये दिल्लगी फिल्म का गाना सुरैया और श्याम की आवाज़ों में, शकील बदायूं की बोल, संगीत नौशाद अली का। आज अभिनेत्री और गायिका सुरैया को उनके जन्मदिवस पर हम याद कर रहे हैं।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गाना सुरैया की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल, संगीत नौशाद का। अगला जो गीत है ये बड़ी बहन फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत हुस्नलाल भगतराम का।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ श्याम सुंदर का संगीतबद्ध किया ये गाना सुरैया की आवाज में, फिल्म का नाम 4 दिन।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अंतराल का समय पूरा हो चुका है, हम हाजिर हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। दास्तान फिल्म का गाना सुरैया की आवाज़ में, शकील बदायूं के बोल, संगीत नौशाद का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत इस फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है हुस्नलाल भगतराम का।

0: आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: ये आवाज़ें थी सुरैया और तलत महमूद की, शब्दकार मिर्ज़ा गालिब, संगीत गुलाम मोहम्मद का, फिल्म मिर्ज़ा गालिब।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में, अब आपको सुनवाते हैं चांद और सूरज। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद

0: मोहब्बत इसको कहते हैं।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
5: मेरी गुड़िया थी ना।
7: पर दादी, आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या?
8: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
10: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको अनजान का लिखा हुआ गाना हम सुनवाते हैं। जी एस कोहली का संगीत, फिल्म का नाम नमस्ते जी।

अंतराल के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में मेरे सनम इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नैयर ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अगला गाना आपको सुनवाते हैं वक्त फिल्म का गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

वक्त फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में, सहेल लुधियानवी के बोल, संगीत रवि का। इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार में पहले हिंदी में समाचार प्रभात सुनिएगा सुबह 8 बजे और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़। हम 8:30 पर आपको लिए चलेंगे हमारे मीडियम वेव स्टूडियोज, जहां से सुनाएंगे हम आपको कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। इस समय प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र

0: जारी किए और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियार फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं।

0: हैं, ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
1: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप

0: में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. US President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports.

0: सही समय व सही दिशा का ज्ञान ना हो तो डूबता सूर्य भी उगता हुआ दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात सही समय पर कही है, क्योंकि ये वो समय है जब हम हमारे श्रोताओं से सीधे मुखातिब होते हैं।

0: सही समय व सही दिशा का ज्ञान ना हो तो डूबता सूर्य भी उगता हुआ दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात सही समय पर कही है, क्योंकि ये वो समय है जब हम हमारे श्रोताओं से सीधे मुखातिब होते हैं, लेकर रोज़ाना की सुबह का एक ताज़ा तरीन अंक नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का। तो इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त बीना, और मेरे साथ है
0: भगवती लक्ष्कार। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज के प्रोग्राम पर अगर हम नज़र डालें तो आज है फिट लाइट मंडे।
1: बिल्कुल।
0: और आज विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस है, और साथ ही साथ प्रमुख स्थानीय खबरें आपको देंगे और हेल्दी हैबिट्स में बात करेंगे, खुश रहने के लिए छोटी छोटी आदतें।
1: बिल्कुल, सिटी अपडेट्स का जो हिस्सा होगा वो शहर की हलचलें बताएगा, और हम आज लेकर जाएंगे आपको शहर में होने वाली एडवेंचर गतिविधियों तक। फिर लिसनर्स कनेक्ट होगा, यानी कि हमारे श्रोताओं को हमारा ये आज का अंक या हमारा नमस्कार उदयपुर रोज़ाना कैसा लगता है वो अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए।
0: तो हमारे व्हाट्सएप
1: नंबर दे दो।
0: हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।
1: बिल्कुल, 9462697568 ये हमारा नंबर है, और आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं सुबह 9:10 के आसपास तक।
0: और आज की अगर हम बात करें तो आज है सोमवती अमावस्या।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और अधिक मास की सोमवती अमावस्या, इस दिन ज्येष्ठ अधिक मास भी खत्म हो रहा है, और इस दिन सूर्य देव की मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं, और ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये दुर्लभ संयोग करीब 100 वर्षों बाद बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये संयोग ईश्वर की भक्ति और पितरों के प्रति कृतज्ञता के लिहाज से बहुत ही अनुकूल माना जाता है।
1: बिल्कुल, आज के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। विवाहित महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और पति के दीर्घायु के लिए व्रत और पूजा आदि करती हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि से अभिषेक किया जाता है, और कहीं कहीं पर पीपल वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा करने की भी परंपरा है। आज के दिन भगवती भोजन, वस्त्र, फल या अन्य वस्तुओं का दान अच्छा माना जाता है।

0: नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारे मीडियम वेव आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लिग सिटी चैनल, इन दोनों पर एक साथ। भगवती, तुमने शाम देखी है, सांझ? सांझ कैसी होती है?
1: बिल्कुल, डूबता हुआ सूरज और उसकी जो अरुणिमा है वो आपके दिल तक पहुंचती है।
0: बिल्कुल, और साथ ही वो पूरे दिन का अनुभव भी समेटे हुए होती है, है ना। ऐसे ही जीवन की सांझ जब होती है, यानी व्यक्ति जब बुजुर्ग होता है, तब उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए?
1: अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और देखिए, आज हम मना रहे हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी कि दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इस बात का संदेश हम यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सहन किए जाने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और भेदभाव में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
0: बिल्कुल, 2026 की जो थीम है वो है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, यानी जागरूकता से आगे बढ़कर बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार की रोकथाम को प्रभावी बनाना। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर मान्यता देकर की, ताकि सरकारें, संस्थाएं और समाज मिलकर बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर सके।
1: हाँ, और अगर हम बात करें आसपास हमारे जो भी बुजुर्ग है, तो हम उनका सम्मान करें, शारीरिक रूप से कोई प्रताड़ना ना दे, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी हम उनको जो है एक संबल प्रदान करें। यानी कि आप अगर उनको मानसिक रूप से सशक्त नहीं बना सकते, तो कम से कम इतना ना करें कि उनको, उनकी मानसिक स्थिति को कोई चोट पहुँचे, है ना।
0: एक और पक्ष है यहाँ पर समझने लायक कि जो बुजुर्ग हैं भगवती, उन्हें भी अपने सुरक्षा के लिए, या आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, उसे पहले से ही तैयार होकर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन की सांझ हर एक व्यक्ति के जीवन में आएगी और तब वो बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करना पड़े या किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े, ऐसी स्थिति में इस तरह के जो शोषण है या दुर्व्यवहार है, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहें, जागरूक रहें। अब तो इतने सारे अधिकार हैं, अगर आप रिटायर्ड हैं और आपके घर में आपके पुत्र पुत्री वो आपकी नहीं देख रेख करते, तब भी आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके उनसे इस तरह की बाध्यता ला सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शुरू से, पहली पीढ़ी से या बचपन से ही बच्चों के अंदर बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान, उनके प्रति एक अच्छी भावना, उनके, उनकी सेवा शुश्रूषा की एक आदत डेवलप की जाए, डाली जाए, कि उन्हें पता है कि ये जीवन चक्र सबके जीवन में आना है। तो शायद हमारे यहाँ ये जो जितने वृद्धाश्रम हैं, ये सब खुलने ही बंद हो जाए, क्योंकि बुज़ुर्गों को फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और सहारा ढूँढने की।
1: अगर हम उनके दुर्व्यवहार की अगर बात करें, तो कई बार हम अनजाने में सही चोट उनको पहुंचा देते हैं, अनुचित तरीके से शारीरिक बल भी कई बार कई घरों में जो है हमने देखे हैं। और धमकाना, अपमान करना, जानबूझकर अकेला छोड़ देना, वृद्धजनों को संपत्ति या पैसों का अवैध रूप से उपयोग करना, हड़पना, या उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे दवा हुई, भोजन हुआ और देखभाल हुई, उनको पूरा नहीं करना, ये सारे ही दुर्व्यवहार में गिने जाते हैं।
0: बिल्कुल, और ये अब कानूनी रूप से भी अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो आप चाहें तो जो बुजुर्ग हैं, अगर वो किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, तो वो अपने लिए सहायता मांग सकते हैं,
1: कानूनी सहायता ले सकते हैं।

श्रोताओं, प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय जरूर हमें भेजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। और अब हम बात करते हैं, भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप

0: में पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। एजबेस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 44 गेंदों में 68 रन बनाए, 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने 17 बॉल पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम को एक एक सफलता मिली और 171 रन का पीछा कर रही पाकिस्तान 17 ओवर में 106 रन पर ऑल आउट हो गई। मुनीबा अली ने सबसे ज़्यादा 41 रन बनाए। भारत से दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए और श्रीचरणी को 3 और शेफाली वर्मा को 1 विकेट मिला।
1: भाई क्या बात है, ये जो कल का मैच था ना, ये बहुत देखने लायक मैच था। और एक अच्छी बात बताऊं भगवती, कि पहले महिलाओं का जो क्रिकेट मैच होता था तो पूरा स्टेडियम खाली पड़ा होता था, सिर्फ टीम्स खेलती होती थी। और कल जब हमने देखा तो वाकई में पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। और आखिर में कमेंटेटर ने एक बहुत अच्छा एक वाक्य बोला, मैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहती हूँ, कि पहले हम हिस्सा लेने आते थे इस कप में, इस बार हम कप लेने आए हैं। चलिए अब हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। और ये यूएसए, कनाडा और मेक्सिको की मेज़बानी में 48 टीमों के बीच में खेला जा रहा है। तो इसमें जो कल के मैच थे, जिसमें ग्रुप बी में कतर और स्विट्ज़रलैंड का मैच था, ये 1-1 से बराबरी पर रहा। ग्रुप सी में ब्राज़ील और मोरक्को के बीच में भी 1-1 से बराबरी पर मैच ड्रॉ हो गया। ग्रुप सी में हैती और स्कॉटलैंड के बीच में मैच था, जिसमें स्कॉटलैंड ने एक ऐतिहासिक विजय 1 गोल कर हैती पर दर्ज की। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की के बीच में मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल कर विजय प्राप्त की और तुर्की 1 भी गोल नहीं बना पाया। ये ग्रुप डी का मैच था। जर्मनी और कुराकाओ के बीच में एक मैच हुआ कल ग्रुप ई का, जिसमें जर्मनी ने 7 गोल किए और कुराकाओ सिर्फ 1 गोल कर पाया और जर्मनी ग्रुप ई के शीर्ष पर पहुंच गया। आज हुए मुकाबलों में ग्रुप एफ का एक मैच था नीदरलैंड और जापान के बीच में, जो 2-2 गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर में मैच जारी था और स्थानीय समय सुबह 7:30 पर आज एक मैच शुरू हुआ स्वीडन और ट्यूनीशिया के बीच में, जिसमें अभी ट्यूनीशिया की ओर से 1 गोल और स्वीडन की तरफ से 2 गोल दागे गए हैं हाफ टाइम तक। इसका अभी तक जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाया। और एक मैच और आज होने वाला है, वो होगा स्पेन और काबो वर्दे के बीच में। तो ये था आज का फीफा वर्ल्ड कप अपडेट।

0: आपके जीवन में खुश रहने की बहुत सारी छोटी छोटी आदतें होती है जिससे आप खुश रह सकते हैं और रोज़मर्रा के जो आप व्यस्तता में रहते हैं उसमें भी मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी आदतों में लाने की ज़रूरत होती है। और सकारात्मक आदतों को अगर हम शामिल करें तो जीवन अधिक सुखद भी बनता है, संतुलित भी बनता है और संतोषपूर्ण भी बनता है।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि आप क्या ऐसा छोटा छोटा उपाय करें कि आप खुश रह सकें। देखो भगवती, खुश रहना कोई एक उपलब्धि नहीं है बल्कि एक छोटा छोटा बातों का रोज़ का अभ्यास होना चाहिए, तभी आप अपने लिए खुशी पा सकते हैं। पहला तो सबसे पहली बात होती है खुश रहने का, मतलब तुम देखोगे कि खुशी कैसे काफूर होती है, कैसे उड़ती है अगर आप खुश हैं। जैसे आपने किसी और से तुलना की अपनी और वो थोड़ा सा 21 हो गया और आप 19 पाए गए तो आपकी खुशी गायब हो जाती है। तो सबसे बेस्ट है कि अपनी तुलना दूसरों से कम करें। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति अपनी प्रगति पर अलग तरह से ध्यान देता है, तो आप सिर्फ अपने बेटरमेंट पर ध्यान दें। और अपने बेटरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से कुछ लूट खसोट कर अपने घर में भर लें, अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान दें और वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, तब आप किसी और से अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे। फिर थोड़े एक्टिव रहें, सक्रिय रहें, 20-25 मिनट आप टहलिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, योग करिए, योग मन और शरीर दोनों को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल, और दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक सोच के साथ करें, है ना। और जब भी आप सकारात्मक सोच के साथ अगर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको चारों तरफ सकारात्मकता दिखाई देगी। और ये ज़रूर करें कि एक गहरी सांस लें, नए दिन के लिए कृतज्ञता भी व्यक्त करें, इससे आपका मन जो है वो हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। और एक सच्ची मुस्कान न केवल आपके चेहरे पर सुंदरता बढ़ाती है बल्कि आपके मन को हल्का और प्रसन्न भी बनाती है। तो हमेशा जहाँ भी जाइए, किसी से भी मिलिए, आप एक हल्की मुस्कान के साथ मिलिए तो उनको लगेगा कि जो अगले वालों को भी पॉजिटिविटी महसूस होगी।
1: बिल्कुल, सामने वाले को ये लगेगा कि आप उनसे मिलकर खुश हुए हैं। और ये खुशी और मुस्कुराहट बहुत इन्फेक्शियस होती है कि आप खुश हैं और आपने किसी से थोड़ी सी खुशी शेयर की तो वो मीलों लंबे तक वो खुशियों का कारवां बढ़ता चला जाता है।
0: कई बार हम जैसे दूसरों की मदद करते हैं उसमें भी खुशी मिलती है। तो ये मदद के लिए आपको कोई अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, इसको अपनी आदत में ले आइए और जहां भी लगे

0: आप मदद के लिए तैयार हो जाइए, है ना।
1: और भगवती ऐसा भी होता है कि खुद के लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालें, मतलब खुद के बेटरमेंट के लिए, जो आपकी रुचियां हैं, जैसे अगर आपको संगीत सुनना पसंद है या आपको बागवानी करना पसंद है तो आप वो सब काम कर सकते हैं। जैसे आपको कोई नया कुछ कला सीखनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें, कुछ लोग पेपर बोट बनाकर भी बहुत खुश हो जाते हैं बारिश में। तो खुशियों का जो पाने का तरीका है वो आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, आपकी खुशी किसी दूसरे के लिए परेशानी का सबब ना बने और आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं डाले, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
0: साथ ही साथ आपको पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है भागदौड़ी की ज़िंदगी है और हम नींद को अक्सर भूल जाते हैं, या यूँ कहें कि हम उसको एक तरीके से उपेक्षा कर देते हैं उस नींद की। तो वो नहीं करना है, आपको बराबर नींद लेनी है और ये नींद लेना जो है आपकी आदत में लाना है। अगर आप आदत में लाएंगे तो सब ओर से प्रसन्नचित भी आप रहेंगे।
1: साथ ही और बात कह सकते हैं अपन कि आप अगर बहुत चिड़चिड़ा सा फील कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये आपकी मानसिक कोई समस्या हो, हो सकता है आपके हार्मोन्स आपको परेशान कर रहे हो। तो ऐसे में आपको चिकित्सक से भी सलाह ले लेनी चाहिए कि भाई मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ या मुझे आजकल इस तरह की परेशानी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे खुश खुद से ही खुश हो जाएं, हो सकता है कभी कभी हमारे शारीरिक जो बदलाव होते हैं वो भी हार्मोन्स जो हमारे होते हैं ये हमें परेशान करते हैं, और हम इसको अगर ठीक से ट्रीटमेंट लें तो हम उसको लेवल करके, बैलेंस करके एक अलग सी खुशी वो भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो यानी कि हम कुल मिलाकर यही कहने चाहते हैं कि खुश रहने की छोटी छोटी आदतें हैं जो हमने बताई है, और भी बहुत सारी आदतें आपको ध्यान में होगी तो हमें ज़रूर लिखिए 9462697568 पर।
1: ये हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: नमस्कार, उदयपुर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, तो जुड़ते हैं जयपुर अजमेर से।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत, चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। होर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के

0: आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, इनोवेटर, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद हैं। जयपुर में कल कृषि और सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी की जांच के आधार पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही उर्वरकों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत का सटीक पता चल सके। बैठक के दौरान उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में खाद की निर्बाध आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों को गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 700 सीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इन सी मार्ट को अच्छी व्यापारिक संभावनाओं वाले स्थानों पर खोला जाएगा ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सके। बैठक में महिला उद्यमों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी, सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसी श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और इसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मॉनसून सीजन को देखते हुए जयपुर में जलभराव रोकने और नालों की सफाई के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और बारिश का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और टोंक सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ से पेड़ गिरने के समाचार हैं। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता से।
2: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा 44 मिलीमीटर जयपुर के चौमू में दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फलादी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा।

0: वहीं सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज रूम से मैं जयकिशन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: हनुमानगढ़ में आज सुबह तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। जिले में हुई बारिश से किसान नरमा, कपास और धान की फसल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाली जिले में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कम प्रीमियम वाली छोटी बीमा योजनाएं शुरू कर आमजन को बड़ी राहत दी है।
2: गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए, जो 12 रुपए की भी है, 424 रुपए की भी है, इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला कर करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज एक नंबर पे है इस मामले में खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने, और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, और यही नहीं पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: नमस्कार, उदयपुर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार।
4: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी बीना।
3: और अब बात करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती हम मना रहे हैं, और शहर और आसपास मेवाड़ में बहुत सी गतिविधियां हो रही है, बहुत से आयोजन हो रहे हैं जिसमें लोगों की जन सहभागिता भी बनी हुई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शहर और हल्दीघाटी क्षेत्र रविवार को श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा गया। शिवदल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ऐतिहासिक 26 फीट नाले पर पहुंचे और जहां चेतक के अद्वितीय बलिदान और स्वामी भक्ति को याद करते हुए शिला पूजन, दीप प्रज्वलन और आरती की गई।
4: बिल्कुल ऐसे ही चेतक सर्कल पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान और नगर निगम के संयुक्त मेजबानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चेतक अश्व पूजन, महाराणा प्रताप की महाआरती, मातृशक्ति द्वारा शौर्य तलवार रास, स्केटिंग पर देशभक्ति नृत्य, अखाड़ों के पहलवानों के हैरत अंगेज प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। इन दोनों आयोजनों के माध्यम से महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।
3: ऐसा ही आयोजन हुआ वार्ड 40 आकाशवाणी कॉलोनी में, जहां 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं और वहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महादेव का जो है दुग्धाभिषेक किया गया। मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक उनका हुआ और आयोजन में बहुत से लोगों ने भाग लिया।
4: बिल्कुल, अभिषेक के दौरान सर्व समाज के लोगों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य, सुख और शांति बनाए रखने की कामना की।
3: साथ ही साथ अगर अलग से खबरों की बात करें तो बहुत सारी खबरें और भी है, और उन खबरों में एक खबर ये भी शामिल है कि जो प्रदेश के सरकारी स्कूल है वहाँ शारीरिक शिक्षकों यानी कि पीटीआई की कमी जल्द दूर होने वाली है। खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 900 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है।

श्रोताओं, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि थोड़ी ही देर में लिसनर्स कनेक्ट होने वाला है, तो आप अपने व्हाट्सएप से हमें कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, भेज सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 9462697568।

0: चलिए, दिन चढ़ता हो या ढलता हो, उदयपुर में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो आपको निश्चित रूप से सुकून देगी और आपको खुश कर देगी। और उदयपुर अपनी शांत झीलों और महलों के अलावा शानदार एडवेंचर गतिविधियों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास की जो अरावली पहाड़ियां हैं, जो झीलें हैं और जो आसपास का वन क्षेत्र है, बहुत सारी एडवेंचरस गतिविधियों को बनाता है, उनको आयोजित करता है, जिसमें एक गतिविधि है पैरा मोटरिंग, जिसमें अरावली पहाड़ियों और झीलों का बर्ड आई व्यू देखने का शानदार अनुभव लिया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा समय सुबह सुबह या शाम को होता है और इसकी अवधि 10 से 25 मिनट की है कि ये आपको पैरामोटरिंग करने मिलती है।
0: एक और गतिविधि है जिप लाइनिंग, और ये आप अरावली पहाड़ियाँ या घाटियों के ऊपर से उड़ने और बर्ड्स आई व्यू देखने के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है। और इसके ज़रिए आपने देखा होगा फूलों की जो घाटी है या चिरवा घाटी है, वहाँ पर भी आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तो आप कुंभलगढ़ अभयारण्य अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका पूरा लुत्फ आप ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, एक जिप लाइन हमारे पास में ही चीरवा की आगे जो तलाई है उसमें स्थित एडवेंचर जो बायोडायवर्सिटी पार्क है वहाँ पर भी एक जिप लाइन मौजूद है। साथ ही चीरवा घाटा पर तो आपने बता ही दी, दूध तलाई पर भी एक जिप लाइन बनी है अभी, जिसमें आप दूध तलाई को पूरा क्रॉस करते हैं जिप लाइन से। और ऐसे ही एक जिप लाइन है फतेहगढ़ में भी है। तो इस तरह से बहुत सारी जिप लाइन है जहाँ पर आप छोटा मोटा एडवेंचर कर सकते हैं। फिर ट्रैकिंग की एक सुविधा हमारे आसपास है।
0: और उनमें शामिल है उबेश्वर जी, नीमच माता मंदिर, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के कई ऐसे पहाड़ है

0: जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं।
1: आप करणी माता जाकर सनसेट और सनराइज का मजा ले सकते हैं, बड़ी झील पर जाकर भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, और सुबह 5:30 से 7:30 बजे का समय गर्मियों में बहुत मुफीद रहता है यहाँ पर जाने के लिए।
0: अगर आप ट्रैकिंग करते हुए बड़ी जो है आप बाहुबली हिल्स जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा, और वहाँ से अगर आप फोटोग्राफी भी करेंगे तो आपको इतना जो है हटकर
1: बिल्कुल दिखाने वाले। अभी एक नया ट्रैक सज्जनगढ़ के बैक साइड में भी चला है, जहाँ पर जाने के लिए आपको आसपास के किसी गांव तक पहुँचना होता है, वहाँ से वो ट्रैकिंग होती है। फिर कयाकिंग और बोटिंग, क्योंकि हम झीलों की नगरी में रहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवेंचर का साधन है, जहाँ पर आप कयाक में कर सकते हैं, पैडल बोट में जा सकते हैं, या सनसेट बोट राइड का मज़ा ले सकते हैं। रोप वे भी है भगवती हमारे यहाँ पर, क्योंकि रोप वे वैसे तो पहाड़ चढ़ने के लिए काम लिया जाता है, लेकिन वो भी एक एडवेंचर से भरपूर एक चीज़ होती है, जिसमें शहर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। तो करणी माता रोप वे हो गया, अभी हमारे यहाँ नीमच माता का भी रोप वे बना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको बहुत एन्जॉयमेंट मिलता है उसको यूज़ करने पर। साथ ही जीप सफारी और अरावली ऑफ रोडिंग, ये भी एक एडवेंचर का ज़रिया है, जहाँ पर ग्रामीण इलाकों, पहाड़ियों और जंगल के ट्रेल्स का अनुभव मिलता है। कई स्थानीय ऑपरेटर ये सुविधा देते हैं।
0: एडवेंचर के अगर शौकीन हैं आप तो एटीवी राइड और गो कार्टिंग, ये इसका भी आप आनंद ले सकते हैं दूतलाई पर, और शहर के विभिन्न एडवेंचर पार्कों में भी आप ऑफ रोड एटीवी राइड्स का लुत्फ ले सकते हैं। अगर हम झाड़ोल की तरफ जाएं तो सांडोल माता पर भी कई एडवेंचर गतिविधियां जो है होती है,
1: और वहां पर भी एक जिप लाइन है सांडोल माता पर भी, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे एडवेंचर पार्क्स और आउटडोर गेम्स उपलब्ध हैं, जहां पर आर्चरी आप कर सकते हैं, एयर गन टारगेट शूटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर आप जाकर एक, जैसे हमने जिप लाइन का जिक्र किया था ना भगवती, वैसे ही जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है हमारा, जो चीरवा के अंदर बना हुआ है, वहाँ पर और भी छोटे छोटे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है, जिसमें आप ऐसे कहीं पर रस्सियों पर चल रहे हैं या टायरों के बीच में से होकर जा रहे हैं, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
0: वहाँ पर जंपिंग भी है, और हाँ, अगर आप जंपिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो पास ही नाथवारा भी जा सकते हैं, वहाँ स्टेचू ऑफ बिलीफ के पास आपको सबसे ऊंची बंजी जंपिंग मिलेगी, और जॉइंट स्विंग की सुविधा भी आपके लिए वहाँ मौजूद है।
1: बिल्कुल, और अब तो हमारे यहाँ सफारी भी खुल गया है, वो भी एक तरह का एडवेंचर ही है।

0: भाई भगवती, हम अगर घड़ी की तरफ देखें तो थोड़ी देर बाद हमारे जाने का वक्त हो जाएगा और ये समय है हमारे लिसनर्स को कनेक्ट करने का हमसे। और हमारे कुछ लिसनर्स ने अपने मैसेजेस के ज़रिए हमसे ये रابطہ कायम किया है। तो सबसे पहला जो मैसेज आया है वो किरण कुमावत का है। ये रोज़ाना सुबह सुबह हमें एक मैसेज भेजती हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बहुत ध्यान लगाकर हमारा प्रोग्राम सुनती हैं। इन्होंने बोला है कि भगवती सर और विद्या मैडम, तो कोई बात नहीं, ये विद्या जी चलेंगी, हम तो बीना जी हैं। मैं टेकरी लिंक रोड से किरण कुमावत बोल रही हूँ। नमस्कार उदयपुर, ये जो प्रोग्राम है हम रोज़ाना सुनते हैं और हमको बहुत पसंद आता है। आज आपने जो जो भी जानकारी दी वो सब हमने बहुत अच्छी लगी। आज आपने बुज़ुर्गों के लिए जो भी जानकारी दी वो अच्छी थी। सही है सर जी, बुज़ुर्ग होता है। साथ ही फीफा वर्ल्ड कप और विमेन क्रिकेट 2026 की जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद किरण जी, आपने एक एक टॉपिक को ध्यान से सुना और फिर अपनी राय जाहिर की है।
1: ये एक मैसेज है कमल कुमार सुहाल का, कौशल्या सुहाल का, धारावती सुहाल का, बाल कृष्ण सुहाल का आनंद विहार सेक्टर 4 से। ये लिखते हैं कि आज हम आकाशवाणी उदयपुर से महत्वपूर्ण संदेश ये देना चाहते हैं कि सभी को वृद्ध जनों की सेवा का प्रण लेना चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए, भोजन की समुचित व्यवस्था करें। और भगवती लक्ष्कार और बीना जी का कहना है कि सभी युवा वर्ग भी वृद्ध अवस्था में आएंगे। मैच के बारे में जानकारी दी वो हमें बहुत ही अच्छी लगी।
0: इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि पर्यटक भी हमारे उदयपुर को देखने, संस्कृति को पहचानने जानने के लिए आते हैं। हमारा उदयपुर बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। खुशियों के लिए भी इन्होंने लिखा कि खुशियां आपस में बात करने करके भी बांट सकते हैं। अच्छी जगह पर्यटन पर जाएं, समूह में जाएं, सज्जनगढ़ जयसमंद जाएं तो सब तरह का ध्यान भी रखें। पानी के पास गहराई में स्नान ना करने जाएं और खुशियों को गा कर डांस करके भी बांटा जा सकता है, इन्होंने ये लिखा है।
1: ये दूसरा मैसेज मेरे पास है घोटीपा भिंडर से रुपेश का। ये लिखते हैं कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और क्रिकेट और फीफा की जानकारी आपने दी वो बहुत ही बढ़िया लगी और आपका कार्यक्रम का जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही अच्छा है।
0: एक 9 साल के हमारे श्रोता है देवर्ष खत्री, जो जयश्री कॉलोनी में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि महाराणा प्रताप के बारे में दी गई जानकारी बहुत अच्छी थी। आज हमने उनके बारे में जो भी उनके जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम हो रहे वो हमारे श्रोताओं से साझा किए थे। और हम हमारे श्रोताओं को कहेंगे कि हम हर सोमवार को ये लिसनर्स कनेक्ट रखते हैं, तो आप अपने विचार, कार्यक्रम के बारे में सुझाव भी आप हमसे साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबरों के ज़रिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462695968। आई थिंक यही है, बिल्कुल। तो 9462697568 हमारे नंबर है श्रोताओं, और आप हमारे इस नंबर को अच्छे से नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और अब हम एक गीत के साथ हमारे श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। आज के लिए लेते हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम से विदा। हम फिर मिलेंगे।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे सुबह की सूचनाओं जानकारियों भरा मनोरंजक कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। FM बैंड 101.9 MHz पर हम FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो चुके, आइए आपको सुनवाएं आज की मॉर्निंग लोकल विंडो के कार्यक्रम।
1: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fun.
1: कोई कितना भी रूखा हो, रूठा हो, चुप रहने वाला हो, एक बात सबके लिए मुश्किल है, वो है संगीत से दूर रहना। तो जी मत रहिए संगीत से दूर, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं आप तक ध्वनि तरंगों के माध्यम से। यह है एफएम रेडियो लेक सिटी, मॉर्निंग लोकल विंडो। नमस्कार उदयपुर, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त बीना, और ढेर सारे स्वागत के साथ सबसे पहले गुड मॉर्निंग लेक सिटी आप तक पहुंचाते हैं।

तो फिर कुछ भी नहीं, तो फिर चिढ़ते रहिए, कुड़ते रहिए और रूठे रूखे से रहिए, मत रहिए। म्यूजिक के साथ रहेंगे ना तो ना रूखे रहेंगे, ना रूठे रहेंगे, ना चिढ़ेंगे, ना कुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। और हमने थोड़ी देर पहले नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में आपको बताया भी था ना कि जो आपको शौक है, जिससे आपका मन बहलता है लेकिन किसी और को परेशानी नहीं होती, वो ज़रूर से करिए। उसी में से एक चीज़ है ये FM सुनना, है ना। चलिए तापमान की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो 31 डिग्री सेल्सियस सुबह का तापमान है, 33 के आसपास जैसा लग रहा है, थोड़ी बहुत हवाएं चल रही हैं, 57% ह्यूमिडिटी है। पिछले सोमवार को 32% थी, बढ़कर इस सोमवार तक 57 हो गई है, और उम्मीद करिए कि अगले सोमवार तक ये फिर से डबल हो जाए और हमें बारिश देखने मिले, मानसून हमारे यहाँ आ जाए, है ना।

तो ये खूबसूरत सा मैसेज था गुड मॉर्निंग लेक सिटी के पहले गाने के रूप में कि तेरी ज़िंदगी में प्यार है तो सब कुछ है, और प्यार नहीं

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: श्रोताओं, ये है एफएम रेडियो लेक सिटी, मॉर्निंग लोकल विंडो चल रही है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना। ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। आगे के प्रोग्राम्स के बारे में बता देते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर ठीक 11 बजे तक प्रोग्राम होगा LCS के तराने, व्हाट्सएप के बहाने। हमारे चुने हुए कुछ गाने होंगे, उन पर आपकी पसंदगी की मुहर लगेगी आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। 11 बजे से लेकर 11:30 तक कार्यक्रम होगा यादों के झरोखे से। इस कार्यक्रम में आज हमने चुने हैं कुछ ऐसे गाने जो बर्फीली वादियों में फिल्माए गए। 11:30 से लेकर ठीक 12 बजे तक राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा आप तक पहुंचेगा। तो बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
2: ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।

थोड़ी देर में प्रोग्राम होगा लेक सिटी की तराने व्हाट्सएप के बहाने, यानी हमारी चुनी हुई चंद फिल्में, उनके कुछ सुमधुर गीत आप तक पहुंचेंगे और आप अपने एक या दो नाम के जरिए व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे कि आपको ये गाना पसंद आया है, है ना। तो ये प्रोग्राम बहुत सारे श्रोताओं के लिए बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता हुआ प्रोग्राम होता है। उसके पहले गुड मॉर्निंग लेक सिटी का आखिरी गीत आपको सुनवा देते हैं।

मुझे आंसुओं का चूरन चबा के डकार मार लीजिए और खुश होने की कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती है। ये था आज का गुड मॉर्निंग लेक सिटी। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वीना और यह है

एफएम रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो एफएम रेडियो लेक सिटी को 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर ट्यून इन करते हैं। आज सोमवार है और आज है हमारी चुनी हुई फिल्मों के कुछ मधुर गीत आप तक पहुंचाने का और बदले में आपकी पसंदगी के व्हाट्सएप मैसेज पाने का। प्रोग्राम है लेक सिटी के तराने व्हाट्सएप के बहाने। आज की फिल्मों के नाम जरा गौर से सुनिएगा। फिल्म पहली, दूसरा आदमी, डुप्लीकेट, क्या दिल ने कहा, कुछ कुछ होता है, क्रांति, सागर, फर्ज पुरानी वाली और यस बॉस। तो ये 8 फिल्में हैं जो आज हमने चुनी हैं। हर तरह की, हर एरा में से निकाल कर एक फिल्म लाने की कोशिश की है। दूसरा आदमी, डुप्लीकेट, क्या दिल ने कहा, कुछ कुछ होता है, क्रांति, सागर, फर्ज और यस बॉस। अब एक रिक्वेस्ट कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। तो जो भी फरमाइशी प्रोग्राम के लिए मैसेज आएंगे कि अमुक अमुक फिल्म का गाना हमें सुनवा दीजिए, वो शामिल हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, पूरे गांव का, पूरे मोहल्ले का नाम आप मत लिखिए। इससे बेहतर है कि आप उन्हें प्रेरित करिए कि हम आपको ये नंबर दे रहे हैं, आप ये गाना सुनिए और अपनी पसंदगी का व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। तीसरी बात कि एक या दो नाम लिखेंगे तो गाने ज़्यादा सुनने मिलेंगे, ये भी मज़ा आएगा। और आखिरी बात कि जब वो गाना बज रहा हो तभी उसकी पसंदगी का मैसेज भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 गानों में आपके नाम ले सके, लेकिन हो सकता है कि इतने सारे मैसेज हो कि हम सिर्फ एक ही गीत में आपका नाम ले सकें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है लेक सिटी के तराने व्हाट्सएप के बहाने। पहली फिल्म, दूसरा आदमी।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
6: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
6: मेरी गुड़िया की ना।
7: दादी, हाँ, आपके नाम?
8: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या?
8: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
10: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: तो जी, ये गाने और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद अब बारी है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ने की। प्यार भरे नमस्कार के साथ ये गाना पसंद किया है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के राम शरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा ने। ये है वडिंगखेड़ा पंजाब के मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, इन्हें भी मैसेज मिल किया है इनका हमें। और ये गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, घनश्याम ज्योति, नविशा, योगेशी, धर्मचंद, रेखा, आकाश, शिवानी, वैशाली, सौरभ, समस्त गोयल और खत्री गोयल परिवार, खत्री मोहल्ला, राजनगर, राजसमंद के श्रोता हैं। फिर से हम बोल रहे हैं कि हमें फरमाइशें मत भेजिए। मोहल्ला फतेहगढ़, लुधियाना, पंजाब के विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीके पुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीके यानी विनोदपुरी, और ये है पांडरकवड़ा, ऐसा कुछ नाम है इनका। और फिर ये भी है कि ये फरमाइशी है। हमने शुरू में कहा था कि फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, तो अगर आप हमें अच्छी तरह से नहीं सुनते तो हम आपका शामिल कैसे करें मैसेज। गोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्येन चौहान, तरुणा, एडवोकेट कमलेश, मधुकांता, नव्याश्री, नित्याश्री, और इन्हें ये गाना पसंद आया है। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से हैं, इन्हें ये गाना पसंद आया है। ये है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नवी दिल्ली के श्रोता हैं। दिल में बिठाकर जी हम नहीं कर रहे हैं ये फरमाइशें पूरी। और फिर एक और ऐसी फरमाइश मिली है, ये है कमल कुमार सुहाल का, कौशल्या श्याम।

जी मटपाल, माया मटपाल, धारावती सुहाल का, हितेश श्वेता और जतिन सुहाल का, सेक्टर 4 आनंद विहार के श्रोता जिन्हें ये गाना पसंद आया है। चेतक सर्कल से मुकेश जिनगर, रेणु जिनगर, प्रेमपुरी गोस्वामी सहेलियों की बाड़ी से हैं और अजय जिनगर, प्रिंस जिनगर, कुलदीप, सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के ये श्रोता जिन्हें ये गाना पसंद आया है। खिरादीवाड़ा रंगीला भेरू चौक के लाल सिंह, मीना, मोहित, मीनाक्षी, कोमल, कुमार परिवार के सदस्य हैं ये। सेक्टर 5 के विनोद जी, नीलम, गजेंद्र जी, जया, कुशल, कोमल, कुमावत हैं और शिवलाल जी, छगन देवी, राजकुमार, मोहित, चारभुजा मंदिर खेरादीवाड़ा के श्रोता हैं। ग्राम नहोना सासाराम से हैं भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र और डमरू कलाकार हैं ये सभी शायद। मिस्टर एंड मिसेस 55 बजाजनगर उदयपुर के श्रोता हैं और ये है ३३० चित्तौड़ा हाउस से विश्वविद्यालय मार्ग के डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, शारदा चित्तौड़ा, रॉबिन, विकास, भावेश, सोनाली, विनीता, कृतिका, दिया, प्रियांश और तनिष्क, तनिष्का। तो ये सारे मैसेज हमें मिले और इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना है फिल्म डुप्लीकेट से।

कत्थई आंखों वाली एक लड़की। जावेद अख्तर ने इसे लिखा। फिल्म डुप्लीकेट का ये गाना कुमार सानू की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। और ये मैसेजेस हमने मिलने शुरू हो गए। नागपुर महाराष्ट्र के कमल सहानी, मिसेस पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफ़ज़ाल, रामगढ़ कैंट झारखंड के हैं निपी सहानी और मिसेस सुनीता सहानी। ये हैं विनोद सालवी, अनीता, पीयूष, शालू, लक्षिता सालवी, सुधारवाड़ा उदयपुर के श्रोता, मुकेश वैद, सिसारमा उदयपुर के, मनन वैद, ईशानी वैद, शीला वैद, थैंक यू लिखते हैं ये समस्त चौहान परिवार के सदस्य। वारियों की घाटी से सत्यनारायण शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा और नाहर सिंह वारी, और ये है कलानौर से नरिंदर, किरण, नितिन और मयंक शर्मा, बीकेपुरी, एस के पुरी, रसपालपुरी, हरीश, राजू शर्मा, सतीशपुरी और विनोदपुरी का ये मैसेज हमें मिला। ये है प्रकाश चंद्र अमेटा, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा, चेरी खिया, लिली अमेटा, अंबिका नगर सेक्टर 5 के ये श्रोता हैं। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के रमेश भारती, विनीत, मिथिल, प्रगति नाचानी परिवार के सभी सदस्य। और ये है हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, दतरेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के श्रोता। और आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए ये कुमार राजेश नागौरी शिव पार्क दुर्गा नर्सरी रोड से हैं एडवोकेट जी। और ये है हरजिंदर सिंह, एंजल, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर के श्रोता। रोशनलाल सालवी, राजकुमारी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवान, क्षेत्रिक सालवी, चौकीदार आवास, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर के पूरा सालवी परिवार हमारा प्रोग्राम सुनता है। ये है कोटवा, नारायणपुर, बब्बा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा हैप्पी और अमित कुमार राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। ये है मलियान, सरधना, मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। और हम फिर से कहेंगे कि हम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश डैनी, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, ये सारे रेडियो के दीवाने श्रोता हैं। गांव खारिया, ढाणी, जिला सिरसा, हरियाणा के सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा अर्जू और नव्या बिजारनिया, गांव हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम और इंदिरा शर्मा का मैसेज मिला है। मनीष टेलर, बाबूलाल धाबाई, सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर के श्रोता जिन्हें ये गाना पसंद आया। टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। वीरम गांव गुजरात के अजीत भावसार, प्रमीला भावसार और परवीन सुल्ताना का मैसेज है। जवाहर नगर उदयपुर के बापू भाई, भारती देवी, कलश मार्ग से लाला सोनी और मोहन कसारा का मैसेज। ये है वारियों की घाटी से भावना नितिन वारी, जगदीश चौक से उमा वारी, साक्षी वारी और मुकेश बडेरिया, मामा जी लाला राम जाटोलिया, दीप टेलर सेंटर एरिया उदयपुर के, साथ में इनके कपिल दादा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं।

ये है फजिलका पंजाब के भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी, विशाल, शालिनी, टिवानशी खेड़ा और ये है एडवोकेट, इनका नाम हम ले चुके हैं, इनके साथ वालों का नाम भी लेते हैं, वीना नागौरी, वैभव नागौरी, दिव्या नागौरी और इनका छोटा बाबू अधिराज नागौरी सुखरिया के साथ में। अच्छा ओके अगला गाना है प्रोग्राम लेक सिटी की तरह ने व्हाट्सएप के बहाने का, फिल्म है क्या दिल ने कहा, टाइटल सॉन्ग।

क्या दिल ने कहा। इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक था। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें थी। गुड मॉर्निंग बीना जी लिखते हैं, उदयलाल कौशल्या, रिया खुशी, तेजस कुलदीप, सुनीता टेलर, ऊंटवाल, धान मंडी, उदयपुर के ये श्रोता हैं। और इसके बाद हमें मैसेज मिला है, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं हमें। ये एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा का मैसेज है। श्री कृष्णा आर्ट दिवाली से ख्याली लाल कुमार, सुप्रिय कुमार, रजत कुमार, नन्ना टप्पू, जय श्री कृष्णा के साथ ये मैसेज भेजते हैं। ये है सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजीमुद्दीन और कैसरुद्दीन। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के रमेश भारती, विनीत मिथिल, प्रगति नाचानी परिवार के श्रोता, इन्होंने डुप्लीकेट का गाना पसंद किया। अवधेश शर्मा, अशोक रोहित, सनम ब्रजेश, हीरालाल, मुकेश, दिलमणि, श्री कृष्ण शर्मा, गांव डुमरी उपखंड सिमरी डुमराव, जिला बक्सर, बिहार के श्रोता जिन्हें क्या दिल ने कहा का गाना पसंद आया। आयुर्वेदिक चौराहा से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान, पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण और नक्श रावत का ये मैसेज है। मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप शर्मा, चिंतामणि की घाटी, उदयपुर की श्रोता। ये है आदर्श नगर मलाउत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, सायना और निवार शर्मा का मैसेज है। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र और पूरा वर्मा परिवार, सुरेंद्र सोलंकी, भावना, प्रदीप और हर्ष, रानू, पार्थ और समस्त सोलंकी परिवार सेक्टर 11 के श्रोता, अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर सेक्टर 5 के श्रोता, धर्मचंद, रेखा, घनश्याम, ज्योति, नविशा, आकाश, वैशाली, सौरभ, समस्त गोयल परिवार, खत्री मोहल्ला, राजनगर, राजसमंद के श्रोता, आपके दोनों मैसेज शामिल हो गए। और अब आप कृपा करके आज के इस कार्यक्रम में मैसेज नहीं करिएगा, बस आप हमारे गीतों का आनंद लीजिएगा। यह संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल, सानी, पिंगावाला चौक, गौरैया, जालंधर के श्रोता, राहुल, योगेश, योगी, विक्रम, लक्ष्मीमार, कमल का कांटा, उदयपुर के श्रोता, बाबूलाल, दिनेश टाक, मुकेश टाक, पुष्कर, सूरजपुर, रेगर कॉलोनी के, दिनेश जिंगर, मोहित जिंगर, इंदु जिंगर, बूथ महल के ये श्रोता हैं। ये है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। ये है एमपी कॉलोनी से महेंद्र चावला, दोंदू, यश, गीत और दीपा चावला। किरण कुमावत का मैसेज है, उदयपुर रामदेव जी के मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी, ललित, किरण, अजय जी, भावना, विनायक, हिमलता, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा, इन्हें कुछ दिल ने कहा, क्या दिल ने कहा था। और फिर ये है राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन का मैसेज। जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, ये मालवा रेडियो श्रोता संघ, ग्राम हिंगड़ी, आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेज रहे हैं। और ये जो मैसेज है ये हम फिर से कह रहे हैं कि ये फरमाइशी मैसेज है तो हम शामिल नहीं कर सकते। तो इस प्रोग्राम के 3 गाने हम आप तक पहुंचा चुके हैं और अगली जो फिल्म है वो है कुछ कुछ होता है।

कुछ कुछ होता है इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें थी। पटेल नगर मलोट से हमें मैसेज मिला है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया के साथ गुड्डू का भी नाम लिखा है। और ये है अशोक कुमार नामदेव, अनीता नामदेव, दीपांश कुमार वाड़ा उदयपुर के श्रोता हैं। तुलसी वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, और राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना है, और मस्कीन फैमिली है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली के ये श्रोता हैं। गांव बारे नोनिया मोहल्ला तहसील जमानिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के संजय, गीता, निकेश और विकास शर्मा। माधड़ी इंडस्ट्रियल एरिया से दुर्गा शंकर पालीवाल, रेखा पालीवाल, मोहित, निकिता, हितेश और चिन्मय का मैसेज हमें मिला। नागा नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई और सेफान भाई का मैसेज है। कुछ कुछ होता है का गाना सुना रहमान कॉलोनी उदयपुर से मोहम्मद इदरीस, रुखसाना बानो और मुस्तफ़ा राजा ने। यही गाना पसंद किया रमेश चंद्र आमेट, मीना टेलर, बेदला उदयपुर के श्रोता है, शायद आमेटा लिखना चाहते थे। ये मैसेज हम पढ़ चुके हैं, बार बार से मस्कीन परिवार मैसेज ना करें। पुराना आरटीओ ऑफिस रोड उदयपुर से है ये मनीष यादव, ममता और दर्शील यादव। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान के रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान, और अब इनके दो मैसेज हम शामिल कर चुके हैं। हजारेश्वर कॉलोनी से अमृत सेन और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। फिर ये हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम, अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर के श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर के राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ये है सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, दिल्ली से कृष्णा पार्क से हैं। और नारवा इंद्रोका जोधपुर राजस्थान के नरपत, वैशाली सोनी, गणेश चौक राता नाड़ा।

जोधपुर राजस्थान के नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी, सलमा अत्तारी, खोजेमा अत्तारी, सुग्रा अत्तारी, संजीदा तबस्सुम अलीशा कलकत्ता वाला, ये चार खारोल कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं। सिद्धार्थ नगर, दरियापुर, बाबली के गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शेरी वडनीर, अकोला के बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर और इनके सभी साथी। और ये है अनार नांदगढ़, छत्तीसगढ़ के माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश, दीपेश वर्मा। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया भाई, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव, ये हैं अनारकली बाजार जगराव पंजाब के हैं। फिल्म कुछ दिल ने कहा, नहीं क्या दिल ने कहा, ये फिल्म का नाम था। तीज का चौक के हैं राजकमल खंडेलवाल, शैलेंद्र खंडेलवाल, इंदरलाल, दीपक सही वालों के हवेली से जगत सिंह चौहान, सविता चौहान, मोना और धीरज। और कुछ कुछ होता है का गाना पसंद किया खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, निधा इरम कलीम, प्रताप नगर के रंजना दवे और नरेश दवे और राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। कुछ और हैं हमारे पास नाम, लेकिन उसे हम आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर में। बस एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं। ये भोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो का नाम है। चलिए अगला गाना फिल्म क्रांति से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: लता मंगेशकर का गाया फिल्म क्रांति का गाना हमने आपको सुनवाया इस कमर्शियल ब्रेक के पहले। ये प्रोग्राम है लेक सिटी के तराने, व्हाट्सएप के बहाने आपके व्हाट्सएप धड़ाधड़ हमें मिलते जा रहे हैं। सूरजपोल उदयपुर के शास्त्राचार्य नियमेश व्यास, एडवोकेट ऐश्वर्य व्यास और लिटिल मास्टर जयांश व्यास का मैसेज हमें मिला है और ये है तुलसीराम जी चौहान सूरजपोल के, गजेंद्र सिंह सारंगदेव, भविराज सिंह, गुरकिया खुद भोहड़ा के, भूपेंद्र सिंह।

दादरी गेट भिवानी के कृष्ण कोमल, किरण कपिल और कुणाल मेहरा का मैसेज है। उदयपुर सेक्टर 9 से हरीश जिनगर, मंजू जिनगर, जय जिनगर, माधवी, छुटकी किट्टू, इन्हें सारे गाने अच्छे लगे, प्रोग्राम अच्छा लगता है। नसीराबाद के महेंद्र डाबी, ममता डाबी और हनी गुना भी सुनना चाहते हैं। शक्तिनगर उदयपुर के संतोष खतूरिया, कामिया खतूरिया, विकास खतूरिया, भानु और हिताक्ष और सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर के निकिता खतूरिया, कशिश हसीजा, दीपक मीर और कियू हसीजा का मैसेज हमें मिला। समृतलाल सालवी, कलावती, कुलदीप, पुरोहितों की माधवी उदयपुर के श्रोता हैं। कृष्ण कुमावत, मिठू झाला उदयपुर के श्रोता, और ये फरमाइशी हम नहीं ले रहे हैं। और ये है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के ये श्रोता। और श्रोताओं, ये लेख सिटी नहीं है, ये लेक यानी झील, LAKE वाला सिटी है। सुशील अनीता त्रिवेदी, गोकुल विलेज उदयपुर के श्रोता, क्रांति का गाना इन्हें पसंद आया है। और ये क्रांति का गाना ऐसे ऐसे इमोजी भेजते हुए भेजा है। विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल शर्मा, अक्षय, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वसीटा, भंवर गौतम वसीटा, राहुल अगरबत्ती, रामद्वारा चौक, धोली बावड़ी उदयपुर के श्रोता। सज्जन नगर उदयपुर से मुसरत जहां, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद इरशाद, सोनू, आफरीन, मोना और राधा का मैसेज है। शुभम, शांता, अभिनव, किरण, कीर्ति, दिनेश शर्मा, कांजी कहाटा उदयपुर के श्रोता। विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत, पूनम, आशीर्वाद नगर, यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर के श्रोता। जबलपुर, मध्य प्रदेश के अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंगिता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह और वेदा सिंह का मैसेज है। और ये है मेहर, ममता, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर, श्री गंगानगर, राजस्थान के श्रोता। यवतमाल, विदर्भ, महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। और ये है हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, अच्छा इनके घर में है ये। उदयपुर वारियों की घाटी से हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत, भोपालवाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री का मैसेज है। डुप्लीकेट के लिए तो आ चुका मैसेज। अरविंद कुमार, गुड़िया भव्या, निवेश नियति है, ये बेनीपट्टी मधुबनी बिहार के श्रोता हैं। और ये हैं सुरेश मेघवाल जी, विश्वविद्यालय मार्ग से। राजेश भंडारी, नम्रता भंडारी, एडवोकेट लक्ष्य राज भंडारी, पृथ्वी राज भंडारी, 150N रोड भोपालपुरा के ये श्रोता जिनका मैसेज हमें मिला है। और ये मैसेज हम ले चुके हैं और हमने कहा कि फरमाइश हम नहीं ले रहे। ये आखिरी मैसेज लेते हैं और उसके बाद एक गाना सुनवाते हैं। राजकुमार माथुर, स्मिता निलय, अक्षिता आलिंद माथुर, बोहरा गणेश जी उदयपुर की श्रोता। और अब बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के आखिरी गीत की तरफ। फिल्म का नाम है सागर।

श्रोताओं, लेक सिटी की तरह ने व्हाट्सएप के बहाने प्रोग्राम का ये आखिरी गीत है और अब 10:51 हो चुके हैं। तो अब इस गीत के लिए भी अब अपनी फरमाइशें मत भेजिए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे नाम रखे हैं जो हमें इस प्रोग्राम में शामिल करने हैं। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे अगले प्रोग्राम में नाम भेजने की। तो अब जिन्होंने 10:51 तक मैसेज भेज दिए उसके बाद के नाम हम आज शामिल नहीं कर पाएंगे।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो ये था प्रोग्राम का आखिरी गीत, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ने का समय बचा है। तो ये जो मैसेज हमें 10:51 पर मिला, भारत जायसवाल सोनी गरासिया गांव मांडवा डूंगरपुर के हमारे श्रोता हैं। इनके पहले हमें मिला कुतुबपुरा से अशरफ खान, रईसा खातून, मंजू निम्मी 80 फिट रोड से नजीबा खान, सबिया खानम, शीबा शहला राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सदस्य, और धानमंडी से कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोज बाला मेघा और गीत हरिव्यासी। ये हैं जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीणा, अश्विनी और विपुल कामड़े, और नीरज, ध्रुवेश, प्रेमशंकर, दिव्यांश, खारोल कॉलोनी फतेहपुरा उदयपुर के श्रोता, बड़गांव रंगास्वामी कॉलोनी से शिवदास रंगास्वामी, श्रीमती द्रौपदी, साधना पूजा, भानु प्रताप दास, महिमा, भास्कर चित्रांशी, शांति, कमला जी, भगवान दास जी रंगास्वामी और पूरा खुबानी परिवार है ये। लता झाला, प्रेम सिंह झाला, विदिशा, लवन्या सिंह, चेतना कंवर झाला, गंभीर सिंह, दिवाली उदयपुर के श्रोता, मीना, मानवता, निशा, दिव्यांशु, निखिल दिवाली उदयपुर के ही श्रोता हैं जिन्हें सागर फिल्म का गाना अच्छा लगा, हाफिजा मिठाई, नफीसा, फकरू, यूनुस, असगर, बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर के श्रोता, हरिशंकर, जीत, रीना, काजल, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सरनी, कोलकाता पश्चिम बंगाल के श्रोता हैं, मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, अनाया टेलर, अक्सा इकरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी सलुम्बर के श्रोता।

गुप्ता, और ये हैं राजकुमारी एन विपिन गोस्वामी चंदनवाड़ी प्रेमनगर के, दुष्यंत एन जिज्ञासा 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। ये जितेंद्र मंजू, पुष्पा चिराग न्यू भोपालपुरा के श्रोता, निर्मला मनीष जी, हेमंत, तारा माली, सोनिया, रोहित, रमेश न्यू भोपालपुरा के श्रोता, प्रदीप, रीना डोली ये भी वहीं के हैं, और जमुनाबाई रूपलाल जी, नन्ना मुन्ना युगू और मदन मंजू मिहिर माहिर ये सभी न्यू भोपालपुरा के श्रोता हैं। एमबी कॉलेज कुमारों का भट्टा के मांगेलाल पुरबिया, पुष्पा रानी पुरबिया, मोती चोटा करजाली हाउस के माधव

अरखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली, देबेन जी का एक मैसेज हमें मिला है। एकता कॉलोनी रोहतक के सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी, अंकित कांगड़ा। तो हमने इस प्रोग्राम के सारे मैसेजेस ले लिए हैं और चलिए चलते चलते आखिरी गीत की चंद पंक्तियां आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इसके लिए अपनी पसंद की मत भेजिएगा। फिल्म का नाम है फर्ज। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लेक सिटी की तराने व्हाट्सएप के बहाने यही खत्म होता है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त बीना। अगला प्रोग्राम होगा यादों के झरोखे से, कहीं मत जाइएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम लेक सिटी के तराने व्हाट्सएप के बहाने। ये है एफएम रेडियो लेक सिटी, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना और प्रोग्राम अब शुरू कर रहे हैं यादों के जरो।

0: के से। पिछली बार हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने शामिल किए थे बच्चों पर फिल्माए गए कुछ गाने, और आज इस गर्मी को देखते हुए हम चुनकर लाए हैं वो गाने जो पूरे विश्व की अलग अलग लोकेशंस पर बर्फीली वादियों में फिल्माए गए हैं, और सबसे टॉप मोस्ट गाना तो यही है।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

0: रोज कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे
1: या हू से फिर ये नाम या ये शब्द शम्मी कपूर के लिए लाइफ टाइम में जुड़ गया था। याहू का जो ये गाना था चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये फिल्म जंगली से ही आया हुआ गाना है। 1961 में शम्मी कपूर की ये फिल्म आई थी जिसमें सायरा बानो ने डेब्यू किया था, सबसे पहली फिल्म थी सायरा बानो की। और एक राज बताएं हम आपको कि इसमें जो याहू जो जोर से बोला गया है ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की नहीं थी, ये फिल्म के राइटर प्रयागराज की आवाज़ थी। शमी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म में फिल्म का नाम पहले मिस्टर हिटलर रखने का विचार था। लता मंगेशकर ने एक गीत इसमें बहुत सुंदर सा गाया, एहसान तेरा होगा मुझ पर। जब उन्होंने सायरा बानो की आवाज़ की नकल करने की कोशिश

थी तो वो सायरा पर बिल्कुल फिट बैठी। गाना सुकू सुकू जो इसमें एक है, उसकी शूटिंग के लिए कश्मीर के गुलमर्ग में ने बर्फ कम लगी तो ये पूरी टीम को शिमला के कुफरी लेकर गए जहां पर इसे फिल्माया गया। तो ये बड़ी चुलबुली और बहुत अच्छे संगीत वाली फिल्म थी जंगली, और बर्फीली वादियों में उछलते कूदते शम्मी कपूर वाकई में बड़ी ठंडक देते हैं। और अगला गाना है ऐसा ही बर्फ के गोले बनाकर फेंकता हुआ, ये भी एक शरारती गाना है आशा भोसले का गाया हुआ।

ये गाना था फिल्म अनामिका से, और अनामिका का ये गाना कश्मीर में शूट किया गया था। 1973 की ये क्लासिक सस्पेंस रोमांस फिल्म थी, जिसमें संजीव कुमार और जया भादुड़ी की बेहतरीन फिल्मों में से एक ये गिनी जाती है। ताहिर हुसैन ने इसे बनाया था और आर डी बर्मन का संगीत था। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए ये सारे गाने थे। संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने इस फिल्म में दूसरी बार रोमांटिक जोड़ी की भूमिका निभाई थी। इन दोनों ने परिचय फिल्म में पिता पुत्री और शोले में ससुर बहू का किरदार निभाया। लता मंगेशकर का गाना बाहों में चले आओ, ये लता मंगेशकर को भी बहुत पसंद था, और इस गाने में डुग्गी नाम के वाद्य यंत्र का बेहतरीन इस्तेमाल आर डी बर्मन ने किया था। आइकनिक गीत के रूप में किशोर कुमार का मेरी भीगी भीगी सी, जो इसका टाइटल सॉन्ग है, ये टूटे हुए दिलों को बड़ा सुकून पहुंचाने वाला गाना माना जाता है। 1973 की सफल फिल्म का 1977 में कल्पना नाम से तेलुगु में रीमेक भी किया गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी और उस साल की 12वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिट फिल्म।

फिल्म थी। चलिए और अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और ये भी बर्फीली वादियों में झरती बर्फ के अंदर फिल्माया गया है।

किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म शर्मीली का ये गाना। यहाँ पर भी शूट तो ऐसे ही किया गया है कि बर्फ गिर रही है, बहुत ठंडक है और राखी गजब की खूबसूरत लगती है। इस फिल्म में सुबोध मुखर्जी ने शर्मीली के लिए सायरा को पसंद किया था, लेकिन अपनी लंबी बीमारी के कारण ये फिल्म वो नहीं कर सकी। इसके बाद ये रोल लीना चंद्रावरकर को ऑफर हुआ, लेकिन डेट्स प्रॉब्लम के कारण उन्होंने भी मना कर दिया और आखिर में ये भूमिका मिली राखी को। और राखी ने एक अलग अपने आप को दर्शाया इस फिल्म में, डबल रोल निभाया।

था राखी ने इस फिल्म में पहली बार, और ये फिल्म 1971 में आई थी। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर और राखी थे, और साथ ही में अजीत और रणजीत और अन्य कलाकार भी थे। एस टी बर्मन और आर डी बर्मन का संगीत था। अब इसमें क्या हुआ कि फिल्म का संगीत वैसे एस डी बर्मन ने दिया, और जैसे कि खिलते हैं गुल यहाँ और ओ मेरी शर्मिली का जो बेस म्यूजिक था वो एस डी बर्मन का था। लेकिन जब एस डी बर्मन बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए, तब उनके बेटे आर डी बर्मन ने इस आइकनिक गाने रेशमी उजाला है और टाइटल सॉन्ग ओ मेरी शर्मिली को कंपोज किया था। जो ये गाना है खिलते हैं गुल यहाँ, इसे गोपाल दास सक्सेना नीरज ने लिखा था। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इस गीत में संतूर बजाया है। मनोहारी सिंह ने इसमें सैक्सोफोन के सुर बिखेरे, और बुर्जोर लार्ड ने गाने के बैकग्राउंड में वाइब्राफोन का इस्तेमाल किया था। ये गाना राग भीम पलासी पर आधारित है। तो बड़े खूबसूरत से गाने बने हैं, फिल्माएं कहीं भी हो, लेकिन उस दौर की ये बात जरूर थी कि गाना सुन के हमें पता चल जाता था कि क्या माहौल रहा होगा जहां पर ये गाना फिल्माया गया। और अब चलते हैं भारत के कश्मीर से सीधे फ्रांस।

अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, ये फिल्म है एन इवनिंग इन पेरिस। 1967 में आई ये फिल्म, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन के बोल और हसरत जयपुरी के संगीत में सजे हुए बहुत सारे गाने इस फिल्म में थे। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की मुख्य भूमिकाओं से सजी इस फिल्म को मुख्य रूप से पेरिस फ्रांस में असली लोकेशन पर शूट किया गया था। शक्ति सामंत ने उस दौर में भव्य और महंगी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसमें पेरिस की सड़कें, एफिल टावर, सीन नदी के नज़ारे फिल्माए गए। और साथ ही इस गाने की मुख्य रूप से अगर शूटिंग देखें तो पेरिस में फिल्माया गया, पेरिस की सड़कें, बगीचे और इसके अलावा सीन नदी और कुछ हिस्से स्विट्ज़रलैंड, लेबनान, बेरूत और नियाग्रा फॉल्स में भी यह फिल्माए गए थे। तो पूरे विश्व की अगर खूबसूरत लोकेशंस देखनी हो तो हिंदी फिल्मों के गानों को टटोलिए, मज़ा आता है देखने में। आखिरी गाना भी कश्मीर में फिल्माया गया है, लेकिन इसके बारे में आज बात करने का समय नहीं मिलेगा और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। फिल्म है रोज़ा। श्रोताओं, आप आनंद लीजिए इस गीत का और दीजिए इजाज़त आपकी रेडियो साथी बीना को, प्रोग्राम यादों के झरोखे से भी और एफएम रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो से भी। आप कहीं मत जाइएगा, इस प्रोग्राम के तुरंत बाद होगा राजस्थानी गीतों का प्रोग्राम गोखड़ा, जिसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी ख्याति।

हम आकाशवाणी उदयपुर से ही बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक्सिटी। इस समय 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गोखड़ा।

रश्मि निशाद्री आवाज में कतरोहाओ की थुनियो अबार आपा सब जना गोखड़ा कार्यक्रम आप हुन रहा हो आकाशवाणी उदयपुर लोसा अबे हुना सा आगलो लोकगीत।

देखो सा, यो तो गीत हुणियो आपा कोटर घर लो। राजस्थान रा लोकगीत नृत्य अपनी संस्कृति रो अहम हिस्सो वेवे है। राजस्थान रा इतिहास रा मायने संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज और उस सवारी वणा गीता में झलक वेवे है। घूमर, कालबेलिया नृत्य, चक्री, भवाई आदि भांति भांति रा नृत्य न केवल मनोरंजन रो साधन ही नहीं वेवे, बल्कि राजस्थान री समृद्ध विरासत रा प्रतीक भी वेवे है। हर गीत, हर नृत्य शैली रा मायने कोई न कोई मनोभाव उद्देश्य भी वेवे है। तो साची प्रीत जठे वेवे है, रूप रंगू सबू पहला दिल और दिल रो मिलन, मनडारी प्रीत सबू पहला वाही साची प्रीत वेवे है। हुनो सा

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: बोल बोल के थक गया।
9: क्या हुआ?
8: नया किडबैग चाहिए।
9: तो पहले क्या

0: कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
0: ले आ गया ना किट बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

देखो सर, राजस्थानी गीतरो कार्यक्रम अभी 28 पूरा हो, ख्याति भाई सा ने इजाजत से वो सा राम राम सा। अभी आप राजस्थानी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गोखड़ा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी उदयपुर से ही बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा।

0: और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। मध्याह्न के 12:05 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले यादों की महफिल कार्यक्रम।
2: नमस्कार, लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है, फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल है और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए, जैसा कि आपको बताया, मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
3: मैंने

सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपने

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मक्कार।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में, समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार की और तर्ज बनाई

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है और इस गीत ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

महादेवन की आवाज में बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हों, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है, पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो साथियों, आज की ये इबारत थी, आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है पसंद किया है और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं। तो आइए आगाज़ कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने, बप्पी लाहिड़ी का संगीत, फिल्म का नाम चलते चलते।

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें गंवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूँ और जहाँ तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूँ। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से, सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं। ऐसा क्यों भाई, अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है। हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती, न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफ़र वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज़ में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

0: तो कभी छा।
1: तो धूप शब्द था जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे लेकिन जिंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

0: जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज सी कर रहा है, कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है, जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुक कर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।
1: जो

0: तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी, आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए, आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज़ गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियों को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं, फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठे सबके कंधे।

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में हैं वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं। तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज़ है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है,

किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। गुलजार के बोल हैं राजेश रोशन का संगीत।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफ़र का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती ज़िंदगी में नज़रअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल ज़रूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, ज़िंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाज़त नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

क्या मिले खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
1: मैं निकला हो गड्डी लेके और रास्ते पर
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
3: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
4: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
8: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
10: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
8: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन

0: कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत
2: बयान होता है, इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर $83 और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
5: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष

0: इस आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके
1: गहरा। हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे

0: ऑफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में पांचवा गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज़ कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्नलाल भगतराम ने, सुरैया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज़, फिल्म का नाम दर्द।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: ये महत्वपूर्ण दिवस है ना।
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में, मतलब ये एक गंभीर विषय है। हो
0: जी
1: सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफ़ी मांग लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी, आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब
0: बस,
1: आने वाली है।
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे। और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जो अभी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है। और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है, ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े,
1: है ना। वही तो बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप, कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयो और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और आप क्या करना है?
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये,
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग 3।
0: जी,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े

0: देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
0: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है? विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने

0: से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। आड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
3: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी।

0: तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगी।
1: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
0: हाँ।
1: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
0: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या? मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
2: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
0: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
1: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
0: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
2: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है, पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
1: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
2: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा, मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
6: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
5: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
6: जी।
5: लेकिन बीच में गीत सुन लिया जाए
6: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी सहेली।
0: और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए। क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियाँ या बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें, उन्हें किसी चीज़ से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार।

0: हार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना उस वक्त हम थोड़ी देर अपना व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर हम जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना उस वक्त हम थोड़ी देर

0: और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती हैं ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है, क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है, तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं, जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है।

0: उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
1: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
0: क्या बात है,
1: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
0: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी, और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
1: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
0: वो
1: है।
0: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
1: चूंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
0: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
1: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज हैं। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है, जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
0: अब क्या करें,
1: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते
0: हैं। गीत

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे
0: और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए,
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपम्प वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना, इससे पानी की बचत तो होती है साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह हैं और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित

0: होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
1: बिल्कुल, एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे। नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था। नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं।
0: बिल्कुल, करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए? आप एक गाना सुनना,
1: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन

0: लइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे। तो मक्खन मलइयो, सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताज़ी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबाल कर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोनों में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, फिर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाइयों खा के आएंगे क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूड़ी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूड़ी होती है ना वो कड़क
1: रहती है। है जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। और आज का जो

0: विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहत नामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधु

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है। और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है।
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे।
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्य उदय से ही शुरू हो जाती है। और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए।

0: ये शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए। या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए घर पर ही, चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल

0: जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजेन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है। आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के आधा

0: घंटे बाद या हो सके तो 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना
0: पड़े, पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
1: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं
1: और कितना खा रहे
0: हैं। कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी,
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: विहार की
5: जी।
4: विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
5: अच्छा,
4: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शीतलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
5: म्यूजिक
4: का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते
5: बिल्कुल।
4: हैं। पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
5: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती हैं कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि

0: पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: अनुशासित टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए।
1: जी,
0: और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा।
0: शुद्ध होगा।
1: जी जी,
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरा

0: नीचे फेंकिए।
1: बेगम ने कहा।
2: क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
1: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
3: तो दोस्तों गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?

0: सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
1: क्या क्या किया,
0: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है, पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, को बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे। हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फलां फलां ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है, यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है, तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित करेंगी नहीं।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए।
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से

0: स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: उठे सबके कदम देखो रम पम पम,

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के
2: जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष है ऑफिस में है, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे।

0: हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
1: और फिर तो से अपना काम करना,
0: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है। आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा। काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
0: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपके आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं ऑफिस में काम करते करते भी, कोई टिप्स मिल गया बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए। आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तुम्हें

जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब

0: नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेन जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
1: रेडियो लेक सिटी, लेक
0: सिटी। हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यही आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
2: नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट
0: वन। अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी कभी भी।
3: हंड्रेड वन पॉइंट नाइन FM रेडियो लेक सिटी।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fuck.

0: 11.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी और शाम के बज चुके हैं 5 और ये है हमारी इवनिंग लोकल विंडो जिसका हम आगाज कर रहे हैं, जिसमें शाम 5 से 7 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ। शाम 5 बजे शुरुआत करते हैं आज की हमारी इवनिंग लोकल विंडो के प्रोग्राम्स की कार्यक्रम युवाणी के साथ।
1: सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहां बात होती है आपके सपनों की, आपके जुनून की और आपके भविष्य की।
2: दोस्तों, आज का शो काफ़ी खास होने वाला है, जहां हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और कई ऐसी शख्सियतों को जो अपने आप आपके फील्ड्स में काफ़ी पॉपुलर हैं।

0: प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वार्ट्ज घड़ियों की। ये ऐसी तकनीक है जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। चलिए जानते हैं कि यह आखिर किस कैसे काम करती है और इससे समय देखने में हमारे नज़रिए को कैसे बदला।
1: हाँ हर्षित, तो हम सभी दिन में कई बार घड़ियाँ देखते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी तकनीक काम करती है, या क्वार्ट्ज घड़ियाँ अपनी सटीकता और भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। आज हम इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए गहराई से बातें करेंगे और अपनी कलाई पर बंधी इस मशीन को और बेहतर तरीके से समझेंगे।
0: समय मापने की शुरुआत बहुत पुराने समय में हुई थी दोस्तों। पहले लोग क्या करते थे, सूरज की स्थिति देखकर समय का अनुमान लगाते थे, जिसे धूप घड़ी कहा जाता था।
1: बिल्कुल
0: इसके बाद समय का थोड़ा और बेहतर मापने के लिए रेत घड़ियाँ और यांत्रिक घड़ियाँ आई, लेकिन उन पुरानी यांत्रिक घड़ियों में पूरी सटीकता नहीं होती थी। वे अवसर प्रतिदिन कुछ मिनट पीछे या आगे हो जाती थी।
1: हाँ अर्षित, फिर विज्ञान ने एक नई दिशा दिखाई और 20वीं सदी में क्वार्ट्ज तकनीक का विकास हुआ। इस तकनीक ने समय मापने की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाया और हमारे घरों की जो मोस्टली वॉल क्लॉक्स या रिस्ट वॉचेस होती हैं हमारी, तो वो इसी तकनीक पे काम करती हैं और यही इसकी बेजोड़ लोकप्रियता और विश्वसनीयता को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है।
0: तो चलिए सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताते हैं कि यह क्वार्ट्ज आखिर होता क्या है। क्वार्ट्ज वास्तव में एक प्राकृतिक खनिज है जो हमारी पृथ्वी की सतह पर जो है किसी भी घड़ी को बिल्कुल सही समय बताने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने जब इस गुण को पहचाना तो उन्होंने इस पारंपरिक घड़ियों के स्प्रिंग और गियर की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब समझते हैं कि घड़ी के अंदर का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती है, एक छोटी बैटरी, क्वार्ट्स क्रिस्टल और एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
1: और इसका काम करने का तरीका जो है बहुत ही दिलचस्प होता है। बैटरी से मिलने वाला छोटा सा करंट इस क्रिस्टल तक पहुंचता है और क्रिस्टल प्रति सेकंड ठीक 32,768 बार कंपन करता है। यह कंपन इतना तेज होता है कि मानव आंखें या कान इसे महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन घड़ी के अंदर लगा माइक्रोचिप सर्किट इन कंपनों को बहुत ही

0: आसानी और सटीकता से गिनता रहता है।
1: जब सर्किट पूरे 32,768 कंपन गिन लेता है तो वह इसे ठीक एक सेकंड मान लेता है और आगे सिग्नल भेजता है। इसी एक सेकंड के प्लस से घड़ी की सुई आगे बढ़ती है या डिजिटल स्क्रीन पर नंबर बदलते हैं। फिर इसी सेकंड से मिनट और मिनट से घंटों की गणना लगातार और बिना रुके होती रहती है। इसी वजह से ये घड़ियाँ अविश्वसनीय रूप से सटीक होती है।
0: और अगर हम तुलना करें तो पूरी पुरानी जो हमारी मैकेनिकल घड़ियों में सैकड़ों छोटे छोटे पुर्जे और नाजुक स्प्रिंग्स होते थे, उन्हें रोज़ चाबी देनी पड़ती थी और गिरने या झटका लगने पर वे तुरंत ख़राब हो जाती थी। इसके विपरीत अब जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती हैं तो उनमें पुर्जे बहुत कम होते हैं और कोई हिलने डुलने वाला जटिल हिस्सा नहीं होता है, इसलिए ये रख रखाव में भी बेहद आसान और टिकाऊ मानी जाती हैं।
1: इस तकनीक का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी निर्माण लागत और कीमत भी है। बेहद कम कीमत में इतनी शानदार सटीकता मिलने के कारण ही यह तकनीक जो है पूरी दुनिया में आम लोगों तक पहुंच पाई है। आज न सिर्फ साधारण घड़ियों में बल्कि हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन और सभी संचार उपकरणों में समय को नियंत्रित करने के लिए इसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है।
0: बिल्कुल, और चलते चलते आपको ये भी बता दें दोस्तों कि आज भले ही हम एडवांस्ड स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में भी यही तकनीक काम करती है। विज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति में छिपी एक छोटी सी खोज भी मानव सभ्यता में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, और क्वार्ट्ज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार और समय को एक सूत्र में बांध दिया।
2: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
3: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
4: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ कदम रखते ही आप 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 2,500 साल पीछे चले जाएं, जहाँ पर एक ही ज़मीन पर कदम रखने से आपको ग्रीक, रोमन, ऑटोमन, बिजेंटिन सभी सभ्यताओं की खुशबू मिले? जी हाँ, आज हम आपको लेके चल रहे हैं अल्बेनिया के सबसे बड़े छिपे हुए खजाने ब्यूट्रिन नेशनल पार्क की सैर पर।
1: दक्षिणी अल्बेनिया के ब्लोर काउंटी में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ सारांडा शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है।
0: बिल्कुल हर्षित, और यह एक खूबसूरत पेनिनसुला है जो कि शांत लगून और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक ग्रीक हीलिंग सेंचुरी के रूप में हुई थी, जो बाद में एक आलिशान रोमन शहर बन गया।
1: यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है निधि, यहाँ का रोमन थिएटर है, जो आज भी इतना शानदार दिखता है कि लगता है अभी कोई नाटक शुरू होने वाला है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा 6ठी शताब्दी का एक बैप्टिस्ट्री, जिसके फर्श पर बने रंग बिरंगे मोजैक्स और पक्षियों के चित्र देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ का लायन गेट और त्रिकोणिया वेनेटियन कास्टल इस बात का सबूत है कि जो भी राजा इस रास्ते से गुजरा वो इस जगह की खूबसूरती का दीवाना हो गया।
0: बिल्कुल हर्षित, और जानते हो उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ जाना बेहद किफ़ायती है। सिर्फ 1,000 अल्बेनियाई लेक यानी लगभग 10 यूरो का टिकट लेकर आप पूरे इतिहास को लाइव देख सकते हैं। और अगर आपको पुरानी इमारतें, समंदर का किनारा और इतिहास के राज पसंद हैं, तो ब्यूट्रिन को आप अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में आज ही जोड़ लीजिए।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, और वाटरलू का जो युद्ध था वो इसी महान सेनापति से जुड़ा हुआ है।
3: नेपोलियन फ्रांस का एक शक्तिशाली शासक और शानदार सैन्य नेता था। उसने कई युद्ध जीते और यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव बना लिया, लेकिन उसकी बढ़ती ताकत से कई देश चिंतित हो गए।
2: 1814 में नेपोलियन की सत्ता छोड़नी पड़ी और उसने निर्वासन में भेज दिया गया। तो लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, कुछ समय बाद वो फिर से फ्रांस में लौट आया।
3: नेपोलियन की वापसी से यूरोप के कई देशों में हलचल मच गई, जैसे ब्रिटेन, एशिया, प्रीशिया और अन्य देशों ने उसके खिलाफ गठबंधन बना लिया। अब एक निर्णायक मुकाबला तय था।
2: 18 जून 1815 को बेल्जियम के वाटरलू नामक स्थान के पास युद्ध शुरू हुआ। नेपोलियन अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था, दूसरी ओर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कर रहे थे।
3: शुरुआत में नेपोलियन को जो है जीत की उम्मीद थी। उसने कई तेज हमले किए और विरोधी सेना पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात उसके अनुसार नहीं चले।
2: वेलिंगटन की सेना मजबूती से डटी रही। इसी बीच प्रशिया के सेना भी युद्ध में शामिल हो गई, इससे नेपोलियन की मुश्किलें और बढ़ गई।
3: अब फ्रांसीसी सेना को दो तरफ से लड़ना पड़ रहा था। धीरे धीरे उसके सैनिक जो थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगे। युद्ध का रुख जो है वो बदलता हुआ दिख रहा था।
2: शाम तक नेपोलियन की हार लगभग तय हो गई थी। उसे युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा और उसकी सेना बिखर गई। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी हार।

0: कारगर साबित हुई।
1: इस हार के बाद नेपोलियन दोबारा सत्ता में नहीं लौट सका। उसे सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया गया और वहीं उसके जीवन का अंतिम समय भी बीता।
0: वाटरलू की जीत ने यूरोप की राजनीति को नई दिशा दी। कई देशों ने मिलकर शांति बनाए रखने की कोशिश की। इस युद्ध का प्रभाव वर्षों तक देखा गया।
1: एक मज़ेदार बात यह है कि आज भी वाटरलू शब्द का उपयोग बड़ी और अंतिम हार के लिए किया जाता है, यानी ऐसा मौका जहां वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाए। यही इस युद्ध की जो ऐतिहासिक पहचान है।
0: इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, लेकिन बल्कि उसके उनसे जो है हमें सीखने का अवसर भी मिलता है। वाटरलू का युद्ध हमें नेतृत्व, रणनीति और सही समय के महत्व की सीख देता है, इसलिए इसे आज भी याद किया जाता है।
1: दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की। कहते हैं जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ अनुभव और संस्कार दोनों रहते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा उनका उतना ही ध्यान रख पाते हैं जितना उन्होंने हमारा रखा था?
0: बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की। एक ऐसा दिन जो हमें अपने बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संदेश देता है।
1: हर वर्ष 15 जून को यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ वाले दुर्व्यवहार के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा का संदेश भी देना है।
0: बिल्कुल हर्षित। और इस दिवस की शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से की गई थी। आज दुनिया के कई देशों में इसे जागरूकता कार्यक्रमों और चर्चाओं के माध्यम से मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षित वातावरण मिले।
1: दोस्तों, वृद्ध दुर्व्यवहार केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाना ही नहीं होता, कई बार अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा या उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करना भी इसका हिस्सा होता है। ऐसी बातें उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।
0: बुजुर्गों को केवल दवाइयों और सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती अर्जित, उन्हें प्यार, सम्मान और अपनत्व की भी आवश्यकता होती है।
1: सही कहा, बिल्कुल।
0: कई बार कुछ मिनट की बातचीत भी उनके चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कान ला देती है।
1: हमारे दादा दादी, नाना नानी अनुभव का जो खजाना होते हैं, उन्होंने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया होता है, उनके अनुभव में हमें सही दिशा मिलती है।
0: आज की हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई ना अर्शद कि हम बहुत भाग दौड़ में रहते हैं और काफ़ी बिजी हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है, और यही समय उन्हें एहसास दिलाता है कि वे अपने परिवार का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं।
1: युवाओं की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने बुज़ुर्गों की बात ध्यान से सुन सकते हैं और उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों।
0: साथ ही हमें समाज में ये भी संदेश फैलाना चाहिए कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बोझ नहीं है बल्कि हमारी धरोहर हैं, और उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी हम सब की है। एक अच्छे समाज की पहचान यही होती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है।
4: दोस्तों, जब भी ईमानदारी, समाज सेवा और जन जागरूकता की बात होती है तो एक नाम जरूर याद आता है, अन्ना हजारे। उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
3: अन्ना हजारे का जन्म 15 जून 1937 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम किसान बाबूराव हजारे है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का साहस नहीं छोड़ा।
4: शुरुआती जीवन आसान नहीं था उनका, परिवार की स्थिति साधारण थी और कई चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।
3: युवा व्यवस्था में अन्ना हजारे भारतीय सेना में भर्ती हुए। सेना में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की और अनुशासन का महत्व सीखा।
4: सेना का जीवन उन्हें आत्मविश्वास और दृढ़ता सिखा कर गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान है।
3: दोस्तों, बात करते हैं रालेगंज सिद्धि का विकास। सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने गाँव रालेगंज सिद्धि लौटे। उस समय गांव का पानी भी जो है उसमें काफ़ी कमी थी, गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था गांव। उन्होंने बदलाव का संकल्प लिया
4: और उन्होंने ग्रामीणों को साथ लेकर जल संरक्षण के कार्य शुरू किए, पेड़ लगाए, पानी बचाने की योजनाएं बनाई और धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी।
3: कुछ वर्षों में रालेगंज सिद्धि एक आदर्श गाँव बन गया। यह बदलाव सामूहिक प्रयास और सही नेतृत्व का प्रमाण था।
4: अन्ना हजारे ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी आवाज़ उठाई थी। उनका मानना था कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
3: साल 2011 में उनका आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना। इस आंदोलन में युवाओं को यह संदेश दिया कि जागरूक नागरिक समाज में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि उनको कौन से अवार्ड्स मिले थे। उनको सबसे पहला अवार्ड मिला था इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमृता अवार्ड्स, जो है 1986 में मिला था उन्हें। फिर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1990 में, फिर पद्म भूषण से 1992 में।
4: बिल्कुल, और इसी के साथ अगर हम उनके जीवन की बात करें तो जीवन उनका बहुत ही सादा सा था। वे हमेशा सादगी, ईमानदारी और सेवा के मूल्यों को महत्व देते थे।
3: अगर उनके जीवन से एक सीख लेनी हो तो वो यह है कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी है।
4: बिल्कुल, और मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी हमें भी बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देती है।
3: दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी और शख्सियत की या व्यक्तित्व की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास के बल पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

0: बात करें तो जीवन उनका बहुत ही सादा सा था। वे हमेशा सादगी, ईमानदारी और सेवा के मूल्यों को महत्व देते थे।
1: अगर उनके जीवन से एक सीख लेनी हो तो वो यह है कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी है।
0: बिल्कुल, और मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी हमें भी बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देती है।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी और शख्सियत की या व्यक्तित्व की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास के बल पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई।
0: दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। तो आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल, यानी एलन मित्तल की।
1: प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उसमें काफी संघर्ष रहा। एलन मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार को मेहनत करते हुए देखा। यही जो है उससे उन्होंने सीखा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
0: उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक व्यवसाय से जुड़कर काम शुरू किया, लेकिन उनका सपना केवल एक व्यवसाय चलाने का नहीं था। वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनकी पहचान दुनिया भर में बने।
1: निधि, अब इनकी व्यावसायिक यात्रा की बात बोली दिए तो वो भी बता देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: दोस्तों, किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता जो है आसान नहीं होता है, ये तो आप सभी को पता है। एलन मित्तल के सामने भी कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर से देखा।
0: उन्होंने भारत के बाहर भी अपने व्यवसाय का विस्तार शुरू किया। कई देशों में जाकर उन्होंने स्टील उद्योग की को समझा और नए अवसर भी तलाशे। धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा।
1: अब देखते हैं उनकी रणनीति जो है सफलता तक कैसे पहुंची। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वे कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेते थे। उन्होंने कई ऐसी स्टील कंपनियां को खरीदा जो घाटे में चल रही थी। लोग जहां समस्या देखते थे वहां वे संभावनाएं देखते थे।
0: अपनी रणनीति और प्रबंधन क्षमता के बल पर उन्होंने उन कंपनियों को फिर से सफल बनाया, और यही उनकी दूरदृष्टि थी जिसने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। उनकी सफलता का जो आधार था वो केवल पैसा नहीं था, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता थी।
1: दोस्तों, साल 2006 उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इसी वर्ष उनकी कंपनी एर्सलो मित्तल का गठन हुआ। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में शामिल हो गई।
0: और यह उपलब्धि केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि भारत के लिए भी गर्व का विषय था। एक भारतीय मूल के उद्योगपति का वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा नाम बनाना सबके लिए प्रेरणादायक था।
1: लेकिन दोस्तों, एलन मित्तल की कहानी सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं है। वे शिक्षा, खेल और सामाजिक कार्यों में भी योगदान देते रहे। उनका मानना है कि सफलता के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। तो सबसे पहले उन्हें बेसेमर गोल्ड मेडल मिला 2007 में, फिर उन्हें पद्म विभूषण मिला 2008 में, फिर फोर्ब्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 में।
0: बिल्कुल, और अगर हम एलन मित्तल के जीवन से कोई सबसे बड़ी सीख ली सकते हैं तो वो है कि बड़ा सोचो।
1: इसके साथ ही मेहनत और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: तो दोस्तों, एलन मित्तल का जीवन हमें सपने देखने, मेहनत करने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देते हैं।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो दोस्तों, बात जब टेबल टेनिस की हो तो चीन और जापान का नाम दिमाग में आता है, लेकिन एक भारतीय खिलाड़ी ऐसी भी है जिन्होंने इस खेल में दुनिया भर में तिरंगा लहरा दिया है। यहाँ बात हो रही है भारत की टेबल टेनिस क्वीन मनिका बत्रा की।
1: 15 जून 1995 को दिल्ली में जन्मी मनिका ने सिर्फ 4 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग के बड़े बड़े ऑफर्स को ठुकरा कर उन्होंने रैकेट थामा और फिर बस इतिहास गवाह है। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सिंगल्स और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

0: दोस्तों इनका खेलने का अंदाज सबसे जुदा है। वो अपने रैकेट के एक तरफ लॉन्ग पिम्पल्स रबर का इस्तेमाल करती हैं। मैच के बीच में वो इतनी तेज़ी से रैकेट घुमाती हैं कि सामने वाला चकमा खा जाता है। इसी जादुई खेल की बदौलत वो दुनिया की टॉप 25 प्लेयर्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एशियन कप में ब्रॉन्ज जीता और ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है।
1: इस साल भी निधि जो है इनका जलवा बरकरार है। अहमदाबाद SG पाइपर्स के लिए खेलते हुए और इंटरनेशनल कोर्ट पर चीन के बड़े बड़े चैंपियंस को धूल चटाते हुए उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आने वाले लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में भारत के लिए ऐतिहासिक मेडल जीतना।
0: बिल्कुल हर्षित, और इसी के साथ अब हम बात करते हैं फुटबॉल के एक फेमस पर्सनालिटी की। तो फुटबॉल के मैदान पर गोल दागने वाले स्ट्राइकर्स की तो तारीफ सब करते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गोलकीपर की जो गोल पोस्ट के सामने दीवार नहीं बल्कि जलता हुआ ज्वालामुखी बन जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये है इतिहास के सबसे खतरनाक और महान गोलकीपर ओलिवर कान।
1: जर्मनी में जन्मे ओलिवर अपनी नेशनल टीम के लिए खेलते हुए गोल पोस्ट को एक अभेद किला बना दिया करते थे। उनका वो गुस्सा, वो आक्रामकता और डिफेंडर्स पर चिल्लाने का अंदाज़ ओपोनेंट टीम के हौसले पस्त कर देने के लिए काफ़ी होता था। तभी उनके फैंस प्यार से वुल्कानो भी कहते थे।
0: वे इतिहास के सबसे सफल जर्मन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 8 बुंडेसलिंगा खिताब, 6 DFB पोकल और 1996 में UEFA कप, UEFA चैम्पियंस लीग और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते हैं। 2002 फीफा वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के इतिहास में गोल्डन ग्लोब जीतने वाले एकमात्र गोलकीपर बने।
1: भारत से भी उनका बेहद खास नाता है। साल 2023 में वे मुंबई आए थे तो उन्होंने भारतीय युवाओं को गुरु मंत्र दिया था, नेवर गिव अप। उन्होंने गोल कीपिंग अकेडमी खोलने की प्लानिंग भी की और उसकी बात भी की, क्योंकि वो मानते हैं कि इंडिया में फुटबॉल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और बात की जाए जब बैडमिंटन कोर्ट की, तो बैडमिंटन कोर्ट पर जब भी किसी महिला खिलाड़ी के दहाड़ने की आवाज़ गूंजती थी तो पूरी दुनिया समझ जाती थी कि कोर्ट पर सिर्फ एक ही नाम राज कर रहा है, स्पेन की बैडमिंटन क्वीन कैरोलिना मैरिन। एक ऐसी खिलाड़ी जिसने एशियन प्लेयर्स के दबदबे को ऐसा तोड़ा कि इतिहास बन गया।
1: दोस्तों वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि बैडमिंटन की वॉरियर थी। महज 8 साल की उम्र में IAS ला ऑर्डन में बैडमिंटन खेलना शुरू किया। वे ओलंपिक चैंपियन, 3 बार वर्ल्ड कप चैंपियन, 8 बार यूरोपियन चैंपियन और वुमेन सिंगल्स में पूर्व विश्व नंबर 1 रह चुकी हैं। उन्होंने रियो ओलंपिक्स 2016 में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था, जिससे ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली इकलौती नॉन एशियन वुमेन प्लेयर बनी।
0: 2016 ओलंपिक फाइनल्स में पीवी सिंधु के साथ उनका वो यादगार मुकाबला कौन ही भूल सकता है हर्षित। जब
1: बिल्कुल
0: भी मरीन और सिंधु आमने सामने होती थी तो मैच नहीं बल्कि कोई ऐसा लगता था महायुद्ध हो रहा है।
1: हालांकि हाल ही में मार्च 2026 में इस महान खिलाड़ी ने मेडिकल इश्यूज की वजह से प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है, लेकिन उनकी वो जो आक्रामकता है, वो बाएं हाथ से जादुई क्रिस क्रॉस स्मैश है और उनकी कभी हार न मानने वाला जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले शख्सियत की। दोस्तों नाम कमाना आसान नहीं होता, लेकिन जो दिलों में जगह बना ले उसे दुनिया कभी नहीं भूलती। आज हम हिंदी सिनेमा की एक ऐसी महान कलाकार की बात करेंगे जिनकी आवाज़ और अदाकारी ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था।
0: बिल्कुल, और वे हैं सुरैया। वे भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों और गायिकाओं में से एक थी।
1: सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत और अभिनय में रुचि थी। उनकी प्रतिभा ने कम उम्र में ही लोगों को जो है उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया था।
0: और उस दौर में फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ खुद गाना गाना भी एक बड़ी कला मानी जाती थी। सुरैया उन्हीं कलाकारों में से एक थी जो अभिनय और गायन दोनों में माहिर थी। यही बात उन्हें अपने समय के अन्य कलाकारों से अलग बनाती थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता जो है काफ़ी बढ़ने लगी और वे दर्शकों को पसंदीदा कलाकार बन गई। उनकी मुस्कान और अभिनय शैली लोगों को बहुत पसंद आती थी।
0: 1940 और 1950

0: 50 के दशक में सुरैया का नाम सफलता की पहचान बन गया था। उनकी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते थे। उस समय वे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सितारों में से एक गिनी जाती थी।
1: दोस्तों, सुरैया की सफलता केवल प्रसिद्धि तक सीमित नहीं थी, उन्होंने अपने काम के प्रति समर्पण और मेहनत से एक विशेष पहचान बनाई। यही कारण है कि आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है।
0: और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे पास प्रतिभा और मेहनत दोनों हो, तो सफलता ज़रूर मिलती है।

0: दोस्तों, अब बात करें हम आज के बर्थडेज की। तो दोस्तों, आज बर्थडे है हॉलीवुड के उस मशहूर एक्ट्रेस का जिसने हमें साफ सफाई से प्यार करना सिखाया। बात हो रही है कॉर्टनी कॉक्स की, जिन्हें हम फ्रेंड्स शो की हमारी सुपर ऑर्गेनाइज्ड शेफ मोनिका गेलर के नाम से भी जानते हैं।
1: 15 जून 1964 को जन्मी कोर्टनी आज पूरे 62 साल की हो गई है, लेकिन उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दोस्तों, वे सिर्फ मोनिका के रूप में नहीं बल्कि फेमस सिर्फ उनके मोनिका के नाम से रूप फेमस नहीं हुई, बल्कि वे हॉरर सिनेमा की भी क्वीन हैं। सुपरहिट फिल्म सीरीज स्क्रीम में भी उनका गेल वेदर्स का रोल भी उतना ही आइकॉनिक है।
0: बिल्कुल। और उनके पुरस्कारों की बात करें तो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, 2 एमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब के लिए नॉमिनेशन, और साथ ही साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार शामिल है।
1: आज एक और ख़ास पर्सनालिटी का बर्थडे भी है, जो कि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है। एक्टर, सिंगर, राइटर, प्रोड्यूसर और टीवी होस्ट, कॉमेडियन एंड मैजिशियन भी है। यूएस में जन्मे नील पैट्रिक हैरिस, जो कि खास तौर पर टीवी पर कॉमेडी रोल्स और मंच पर ड्रामेटिक और म्यूजिकल रोल्स के लिए जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल। और टीवी पर वे एबीसी सीरीज डूगी हॉज़र एमडी में मेन रोल निभाने के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर टीवी सीरीज फॉर कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नॉमिनेट

0: किया गया था। साथ ही साथ CBS सीरीज हाउ आई मेट योर मदर में बार्नी स्टिंसन के रूप में, जिसके लिए उन्हें 4 एमी अवार्ड्स नॉमिनेशन मिले थे।
1: उन्होंने रेंट के नेशनल टूर में मार्क कोहेन की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने डेविड ओबन के प्ले प्रूफ से ब्रॉडवे में पदार्पण भी किया। उन्होंने अपने करियर में कई अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें एक टोनी अवार्ड, 5 प्राइम टाइम एमी अवार्ड शामिल है। साथ ही उन्हें ग्रैमी अवार्ड और 3 एक्टर अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेशन मिला है।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के सामने खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी मुकाबले में पांच बार की चैंपियन ब्राज़ील और मोरक्को का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। वनडे की चैंपियन भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का आगाज भी जीत के साथ किया।
1: और जाते जाते दोस्तों, अब हम आपको शेयर मार्केट की भी अपडेट दे देते हैं। तो निफ्टी 50 23,859.45 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 76,264.33 पर बंद हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपके साथ मैं थी निधि जैन और मेरे साथ थे
0: हर्षित।
1: अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने।

0: यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: वन 1.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम बातें मुलाकातें। बातें मुलाकातें में आज के हमारे मेहमान हैं निदेशक प्रताप गौरव केंद्र अनुराग सक्सेना, जिनसे बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह राठौर।
4: श्रोताओं, यह है कार्यक्रम बातें मुलाकातें और बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं अनुराग सक्सेना जी। आप निदेशक हैं प्रताप गौरव केंद्र और इनसे हम जानेंगे कि मेवाड़ की धरा पर जो ये प्रताप गौरव केंद्र है, इस पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या यहाँ की विशेषता है, क्या ऐसे खास यहाँ आयोजन होते हैं जिससे इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
5: नमस्कार
4: सक्सेना साहब, अगर हम बात करें जिस हम प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, इनके उद्देश्य को लेकर बात कर रहे हैं, तो इन प्रमुख विशेषताओं को थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताएं जिससे हमारे श्रोताओं को जानकारी हो सके कि ये स्थल इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
5: जी बिल्कुल, प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना 2006-07 हुई थी, जब हमने यहाँ वीर शिरोमणि महाप्रताप समिति के नाम से, जो 2002 से हमारी एक समिति बनी हुई थी और उसमें समाज के बड़े जाने माने लोग काम करते थे, जिनकी चिंता का विषय यह था कि आज की नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के विषय में बहुत कम जानकारी है और जो जानकारी है वो भी काफ़ी भ्रम पैदा करने वाली है।

0: एक सही जानकारी और सही अर्थों में जानकारी मिले, उस दृष्टि से 2002 में समिति बनी और उन्होंने कई प्रकार के सेमिनार्स किए, कई प्रकार के मेलों में प्रदर्शनी लगाकर एक प्रेरणा देने वाले कई छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहे। और उसके बाद एक विचार किया कि महाराणा प्रताप को जानने समझने के लिए, और तो और मेवाड़ को भी जानने समझने के लिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई एक म्यूजियम होना चाहिए। और उसी को लेकर प्रताप गौरव केंद्र की 2007 में नींव रखी गई और उसके पास पश्चात ये सारा जो आप निर्माण अभी देख रहे हैं वो सब वहाँ हुआ है। तो मूल उद्देश्य हमारा यह है कि महाराणा प्रताप को पूरे विश्व के जन जन तक लोकप्रिय बनाना है, महाराणा प्रताप के बारे में जो मिथक हैं, जो भ्रम हैं, उन्हें दूर करना है, और महाराणा प्रताप के बारे में एक सही नैरेटिव हमको वापस पुनः स्थापित करना है। उन सब कामों में हम लगे हुए हैं।
1: तो सक्सेना जी, अगर जिस हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की हम बात कर रहे हैं, वो प्रातः स्मरणीय भी है, आज की युवा पीढ़ी को उनके बारे में, उनके जीवन दर्शन को बताना चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रताप गौरव केंद्र की तरफ बात करते हैं तो वहाँ पर महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष को आपने किस तरह से चित्रांकित किया है या उसको किस तरह से उकेरा, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
0: जी बिल्कुल, प्रताप गौरव केंद्र जब भी आप आते हैं तो प्रताप गौरव केंद्र की यात्रा आप एकदम अनूठी है। मतलब हम लोग प्रताप गौरव केंद्र का जब प्रचार प्रसार भी करते हैं तो आपने देखा होगा होर्डिंग्स में लिखते हैं, प्रताप गौरव केंद्र नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मेरा बहुत अनुभव रहा है कई बार पर्यटकों से, जब मैं बात करता हूँ, जब वो अंदर जाते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो एक एक नएपन की का एहसास उनकी बातों से होता है, क्योंकि हमने बहुत बहुत सलीके से, बहुत बहुत सूक्ष्मता से सोच कर, जगह जगह बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, एक क्रोनोलॉजी के साथ एक पूरे मेवाड़ के इतिहास को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से पिरोया है। और ना केवल कहानियां हैं बल्कि हमने सही इतिहास को सामने रखने के लिए तर्कों और तथ्यों के आधार पर पूरी गैलरीज डेवलप की हैं। जैसे हमारे हल्दीघाटी युद्ध दीर्घा है, हल्दीघाटी विजय युद्ध दीर्घा है, तो उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा है। वहाँ वैसा का वैसा दर्रा हमने बनाने का प्रयास किया है जैसा दर्रा हल्दीघाटी का था, एक घोड़ा ही उसमें से निकल सकता था जैसा कहते हैं। तो इस प्रकार से वो दृश्य एकदम सजीव हो उठते हैं और हमारे जो मार्गदर्शक हैं, गाइड्स हैं, जो हम निशुल्क सभी को उपलब्ध करवाते हैं, वो ग्रुप्स के सामने जब प्रेजेंटेशन करते हैं पूरी कहानी का, हल्दीघाटी युद्ध विजय का क्या दृश्य था और कौन से तथ्य थे जिसके आधार पर कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में विजयी हुए थे, तो लोगों को एकदम नया उसका, उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर जैसे जैसे वो ऑडियो विजुअल्स हमारे हैं और जो मैकेनिकल शो हैं, हमारे जो वाटर लेजर शो है, यानी ऐसे मतलब कहते हैं वेरियस एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। फिर स्टिल में भी हमने कुछ महापुरुषों की प्रदर्शनियां हैं, राजस्थान के नाम से एक राजस्थान दीर्घा है जिसमें हमने संत महात्मा क्रांतिकारी ऐसे जो राजस्थान के 25 ऐसे प्रमुख संत हैं उनका वर्णन है। और पूरा म्यूजियम का टूर करने के बाद जब हम भारत माता मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर हम एक वहाँ जो हमारा एक केंद्र हमने बनाया हुआ है, वहाँ जाकर हम जब शांति से बैठते हैं, एक एक अलग ही प्रकार का राष्ट्रभक्ति का भाव हमारे अंदर आता है। इसीलिए प्रताप गौरव केंद्र को हम प्रताप गौरव केंद्र नहीं कहते बल्कि एक राष्ट्रीय तीर्थ कहते हैं।
1: अनुराग सक्सेना जी, अगर हम बात करें, क्योंकि उदयपुर जो मेवाड़ की पावन धरा है और हम काफ़ी भाग्यशाली है कि यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं,
0: जी
1: आगंतुक आते हैं, साथ ही साथ आजकल देखा गया है कि विद्यालय से छात्र और बच्चे या कॉलेज के युवा सभी लोग वहाँ पर इस तीर्थ पर आ रहे हैं जहाँ पर
0: जी
1: मेवाड़ की जो वीर भूमि है उसकी गाथा को वो जीवंत रूप में देख सके। तो खास ऐसा आकर्षण क्या रहता है या लोगों के जो अनुभव आपके
0: जी
1: साथ जब साझा होते हैं तो आप क्या पाते हैं कि क्या विशेषता इस स्थान की उनकी नज़र में प्रमुख रही है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं मुझे याद है अभी लगभग 2 वर्ष पहले कुछ मुंबई की बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो मुझे यहाँ से गोगुंदा रासतिलक स्थली हम किसी काम के लिए गए हुए थे वहाँ मिली। तो मुंबई की लड़कियाँ गोगुंदा रासतिलक स्थली में क्या कर रही हैं, तो मैंने पूछा आप इतनी दूर कैसे आए, तो वो बोले हम महाराणा प्रताप के ऑथेंटिक हिस्ट्री को समझना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप प्रताप गौरव केंद्र गए, बोले नहीं हम नहीं गए। तो मैंने पूछा आपको जानकारी है, बोला हाँ मुझे किसी ने कहा था लेकिन हम जा नहीं पाए, हमारा हमको हमारा जो टैक्सी वाला था उसने बताया।

0: नहीं, तो मैंने उन्हें गाइड किया आप ऐसे ऐसे करके जाइए। तो वो प्रताप गौरव केंद्र आए। अगले दिन जब वो प्रताप गौरव केंद्र आए तो मैंने बताया था कि मैं भी वहीं मिलूंगा। पूरा परिसर देखने के बाद, पूरा उन्होंने सारी गैलरीज देखी, सारे शोज देखे, उसके बाद वो स्पेशली मिलने आई और वो बोले कि महाराणा प्रताप के बारे में इस ढंग से हमने कभी नहीं सोचा था, हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और ऐसा एक्सपीरियंस सभी को मिलता है। यहाँ जिस तरह से हमने उसको प्रेजेंट किया है, मेवाड़ की ऐसी घटनाएं जो वास्तव में हमारे बच्चों को जाननी चाहिए, प्रेरणा देने वाली। यानी अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को जब अमर सिंह उठाकर ले आए, तो महाराणा प्रताप ने अपने किस प्रकार उज्जवल चरित्र का दर्शन दिया, कैसे सुल्तान खान को अमर सिंह ने एक भाले के वार से धराशायी कर दिया। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनको हमारे बच्चों को जानना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे तेजस्वी थे, कैसे वीर थे, कैसे साहसी थे। और तो और भक्तिमती मीरा के रूप में भक्ति के एकदम उच्चतम शिखर को छू लेने वाले हमारे यहाँ ऐसी मातृशक्ति भी हुई है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है प्रताप गौरव केंद्र का, वो एकदम विलक्षण है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो देखने पर ही मालूम पड़ सकता है, मैं मेरे बोलने से तो इसको अनुभव नहीं किया जा सकता।
1: महाराणा प्रताप से जुड़े जीवन की विभिन्न घटनाएं और उनके साथ प्रताप गौरव केंद्र पर जो व्यवस्था है उन पर और भी बातें जारी रहेगी। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: It's not a gangster song. It's a song about a warrior.

0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम है बातें मुलाकातें, और बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ हैं अनुराग सक्सेना जी। आप निदेशक हैं प्रताप गौरव केंद्र के। और ब्रेक में जाने से पहले हम प्रताप गौरव केंद्र पे बनी हुई आकृतियां, उनके महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन से जुड़ी बातें आप साझा कर रहे थे। सर, अगर हम बात करें प्रताप गौरव केंद्र के आधुनिकीकरण की, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर आधुनिक तकनीक का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है, लाइट एंड साउंड शो के जरिए वहाँ पर प्रताप के जीवन दर्शन और युद्ध को बड़े अच्छे रूप से दिखाया जाता है, डिजिटल माध्यम का उसमें उपयोग किया गया, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें।
1: जी हाँ, हम लगातार प्रताप गौरव केंद्र के आधुनिकीकरण के प्रयास करते रहते हैं। जब प्रताप गौरव केंद्र प्रारंभ हुआ था तो हमने एक रोबोटिक शो डेवलप किया था। अभी उस रोबोटिक शो जो था वो पहले एक तरह से केवल स्टैटिक नहीं था, हल्के से कुछ मूवमेंट्स होते थे, पर वो मूवमेंट्स 360 डिग्री नहीं होते थे, केवल आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल होते थे। अभी हमने उसको थोड़ा सा और एडवांस करने की तरफ आगे कदम बढ़ाया है। तो अब आप प्रताप गौरव केंद्र जब एक महीने बाद आएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि गर्दन केवल अब बाएं या दाएं नहीं घूमती, तो चारों तरफ घूमती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि रोबोटिक शो कैसे एडवांस हो सकता है, उस पर हम काम करते हैं। तो रोबोटिक शो, क्योंकि जब सामने खड़ी हुई एक मूर्ति, वो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई सामने कोई एक व्यक्ति जीवित खड़ा हो, वो बात कर रहे होते हैं आपस में, और उसको साउंड इफेक्ट्स के साथ जब एकदम मार्मिक बात कही जाती है, दिल को छू लेने वाले वहाँ पे डायलॉग्स होते हैं आपस, बहुत सुंदर संगीत होता है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, तो आदमी के मन पर असर करता है। इसीलिए हम देखते हैं ना, दृश्य श्रव्य माध्यम कोई भी हो, फिल्में भी हमारे ऊपर असर करती हैं, और टेलीविज़न भी, वेब सीरीज़ भी असर करती है, और हमारा रेडियो भी असर करता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस, जब सामने देखना, सुनना और समझना, ये तीनों चीज़ें साथ चलती हैं तो हमारे मन पर असर होता है। तो आज की पीढ़ी को केवल कहानी सुनाना नहीं है, तो उसको कहानी का अनुभव करवाना है। तो ऐसे एक्सपीरियंस के लिए हम लगातार अपने केंद्र को इस प्रकार से आधुनिकीकरण की तरफ जोड़ते रहते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ जो लाइट एंड साउंड शोज हैं वो अपने आप में धीरे धीरे करके, पहले जिस तरह के थे उसको हम धीरे धीरे एडवांसमेंट की ओर ले जा रहे हैं। पिछले 2 साल पहले हमने एक वाटर लेजर शो शुरू किया था, पानी के पर्दे पर पूरे राजस्थान में चलने वाला एकमात्र शो है वो, महाराणा प्रताप की जीवनी को ऐसा साकार करता है कि जिसको देखकर हमें एकदम रोमांच का अनुभव होता है। तो और आगे भी हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: अनुराग जी, अगर बात की जाए तो मेवाड़ के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में ये प्रताप गौरव केंद्र की भूमिका को अगर हम समझना चाहें तो इसे आप किस तरह से बताएंगे?
1: देखिए, हमारा लक्ष्य तो केवल मेवाड़ के इतिहास को, महाराणा प्रताप के जीवन को और उनके द्वारा किए हुए कामों को जन जन तक पहुँचाने का ही है। लगातार इस पर हम काम करते रहते हैं, ना केवल एक म्यूजियम के रूप में, बल्कि हम एक शोध केंद्र के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। हमारा MOU राजस्थान विद्यापीठ से भी है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से भी है, और देश के कई और संस्थानों से भी, जैसे सभ्यता अध्ययन केंद्र करके एक बड़ा संस्थान है दिल्ली में, उससे भी हमने MOU किया हुआ है। और हम इन सभी संस्थानों के माध्यम से किए हुए MOU के माध्यम के कारण से कई प्रकार के नए जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको काम में लेते हुए और महाराणा प्रताप के एकदम सत्य इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, कहानियों में कुछ बात कही जाती है, पुस्तक में कुछ लिखा जाता है, लेकिन जब हम उसके सोर्सेस तलाशते हैं तो हमको प्राइमरी सोर्स नहीं मिलता, बड़ा भ्रामक होता है, या फिर उसके कई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिलते हैं। तो उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि किसी भी तरीके से बहुत सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स की तरफ आगे बढ़ा जाए, और उसके लिए शोध की आवश्यकता होती है, मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो एक तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं जिससे मेवाड़ और प्रताप के इतिहास को इन भ्रामक तथ्यों से बचाया जा सके।

0: और तो और मैं तो समझता हूँ इतिहास के साथ आज़ादी के बाद छेड़छाड़ करने वालों ने इस प्रकार का इतिहास लिखा है कि आज भी हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी लिखने में उन लोगों को संकोच होता है जो लोग मेवाड़ के इतिहास को दूषित करना चाहते हैं या जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास को जानबूझ के दबाने का प्रयास किया है। जो लोग दिल्ली केंद्रित भारत मानते हैं, हम दिल्ली केंद्रित नहीं हैं, दिल्ली तो बाद में देश की राजधानी बनी है, देश की राजधानी तो मेवाड़ था, देश की राजधानी तो उज्जैनी थी, देश की राजधानी तो मगध थी, समय समय पर देश की राजधानी बदलती रही होगी, लेकिन राष्ट्र जहां से प्रेरणा पाता है वो उस राष्ट्र की राजधानी होती है। राजनयिक राजधानी हो सकता है आज दिल्ली है, लेकिन वर्षानुवर्ष से ये राष्ट्र कोई एक दिन का तो नहीं है, हजारों लाखों वर्षों का ये राष्ट्र है, और इसलिए उन सभी स्थानों को आज समझने की और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने की जरूरत है। इसलिए हम ऐसे सभी विषयों पर काम करते हैं जो मेवाड़ से जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में लोगों को या तो जानकारी कम है या भ्रामक जानकारी है, उसके लिए चाहे शोध हो चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, हम सब कुछ उपयोग करते हैं।
1: सक्सेना जी, क्योंकि विभिन्न शोध संस्थाओं के साथ आपका टाइप कह दें या MOU है, कई विश्वविद्यालय के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये सब बातें जब निकल के आती है और यहाँ के विश्वविद्यालय के शोधार्थी हुए या विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं जब वो यहाँ पहुँचते हैं, तो युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन से क्या एक सीख मिलती है और क्या प्रेरणादायक संदेश लोगों तक पहुँच रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
0: देखिए, महाराणा प्रताप को मैं अगर पूरे परिदृश्य में देखूं, संपूर्ण परिदृश्य में देखूं, तो प्रताप के समान नायक ढूंढना हमारे इतिहास में मुश्किल है। प्रताप जन जन के नायक थे, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर हाँ किसी से तुलना कर सकते हैं तो केवल भगवान श्री राम से तुलना कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने एक बहुत कितना अकेले व्यक्ति ने एक बड़ी सेना खड़ी की, और वो सेना किन लोगों की थी? कमजोर लोगों की, रीछों की, भीलों की, वानरों की, और वो जो सेना थी उस सेना ने एक बड़ी आततायी शक्ति को हराया था, रावण को। प्रताप ने भी वही किया। प्रताप ने जन जन के अंदर के स्वाभिमान का जागरण किया, स्वदेश प्रेम का जागरण किया, और मेवाड़ को एक मोतियों की माला की तरह जोड़ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सर्व समाज से लोग निकल निकल कर आए और योद्धा के समान लड़े। प्रताप की सेना में हम एक बात बोलते हैं कि राजपूत और भील समाज के लोग मिलकर लड़े, मैं तो कहता हूं केवल राजपूत समाज और भील समाज ही नहीं, कोई ऐसा जाति समाज नहीं था, ऐसा कहते हैं कि 36 के 36 कौम, सभी जातियों के लोग मिलकर लड़े थे, चाहे सुनार हो, चाहे खाती हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे बनिया हो, कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसके लोग युद्ध में नहीं लड़े थे। तो महाराणा प्रताप से एक सीख हम ले सकते हैं, ना केवल वो सामाजिक समरसता के नायक थे, महाराणा प्रताप बहुत दूरदृष्टा थे। जब समय आया, प्रताप ने, अकबर ने बहुत उनको उलझाने का प्रयास किया कि वो युद्ध में आगे बढ़कर लड़ें, लेकिन प्रताप ने बहुत धीरज रखा, और जब समय आया कि संघर्ष खड़ा करना है तो उन्होंने जन जन को जोड़ते हुए जंगल में जाने का संकल्प लिया। तो ऐसे महानायक से प्रेरणा लेने के लिए मैं समझता हूँ युवाओं के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनसे वो प्रेरणा ले सकते हैं। प्रताप से बड़ा नायक ढूंढना मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है।
1: प्रताप गौरव केंद्र पर हो रही और भी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: छोटा कार्यक्रम है बातें मुलाकातें, और आज बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं अनुराग सक्सेना जी। आप निदेशक हैं प्रताप गौरव केंद्र के। अनुराग जी, अगर बात ब्रेक में जाने से पहले हमने प्रताप के जीवन दर्शन को उन शोध संस्थानों के रूप में किस तरह से आम जन या युवाओं तक हम पहुँचा रहे हैं उनके बारे में हमने बात की, लेकिन एक खास चीज़ यहाँ पर यह भी है कि इन सब गतिविधियों के साथ साथ अन्य ऐसी कोई शैक्षणिक, सांस्कृतिक या शोध संबंधी और कोई गतिविधियां हो रही हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं और जो लोगों को जानना जरूरी है, उसके बारे में आप बताएं।
1: प्रताप गौरव केंद्र पर हम साल में बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं बताऊंगा। वैसे तो इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, मंदिर से संबंधी भी कुछ, जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है, बहुत सारे और कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन मैं प्रताप गौरव केंद्र के नाते दो प्रकार के कार्यक्रमों का आपके सामने वर्णन करूंगा। एक कार्यक्रम है जो एकेडमिक है, जिसमें हम एकेडमिक लोगों को यहाँ बुलाते हैं और उनके साथ मिलकर अनेकों प्रकार के विषयों पर सेमिनार करते हैं। विषय अलग अलग हो सकते हैं। हमने पिछले दिनों ज्योतिष और वर्तमान भारतीय जो कालगणना है उस पर एक दो दिन की सेमिनार की थी देवस्थान विभाग के सहयोग से। आप कल्पना कीजिए, उस देवस्थान विभाग के सहयोग से की गई कालगणना से 4 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कई राज्यों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सुंदर वो सेमिनार रही थी। अलग अलग विषयों पर, इतिहास के भी बहुत सारे विषयों पर करते ही हैं, तो अन्य विषयों पर भी अलग अलग प्रकार के संदर्भों पर हम इस प्रकार की सेमिनार्स करते हैं। तो एक तो विषय ये हो गया, दूसरा हम कुछ वर्कशॉप्स करते हैं। जैसे हमारी एक वर्कशॉप है जिसको हम पुरालेख की वर्कशॉप कहते हैं, यानी जो पुरानी लिपियां हैं, जैसे ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, जो हमारी पाली भाषा है, ये सब कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है और बहुत सारी जो ऐसी

0: चीजें हैं जिनको हमको पुराने लेखों को पढ़ना है, हमको उनको समझना है, हमारे को शिलालेख समझने हैं, बहुत सारे पुराने हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं उनको पढ़ना है, समझना है, तो हमको उन लिपियों को पढ़ना समझना आना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक 7 दिन की वर्कशॉप पिछले लगभग 3 वर्षों से हम कर रहे हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस जो वर्कशॉप के लिए हमारे पास पूरे देश के कई सारे विश्वविद्यालयों से फोन आते हैं कि आप वो वर्कशॉप कब करने वाले हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को हम भेजें, और तो और कई प्रोफेसर्स भी उसमें पढ़ने के लिए समझने के लिए आते हैं, देश भर के विद्वान उसमें आकर इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम कई और विषयों पर भी काम करते हैं, ऐसी वर्कशॉप हम शॉर्ट फिल्म्स की करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज की करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर भी करते हैं। कारण केवल ये है कि हम प्रताप गौरव केंद्र के माध्यम से कई सारी चीज़ों को लेकर उसका केंद्र प्रताप गौरव केंद्र को बनाने में काम कर रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम हम करते हैं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर, और एक और बड़ा कार्यक्रम हम करते हैं दिवेर विजय महोत्सव के नाम से। प्रताप जयंती पर तो आप पिछले कई वर्षों से आप बड़े बड़े कार्यक्रम देख ही रहे होंगे, इस वर्ष भी कार्यक्रम होने ही वाला है, लेकिन दिवेर विजय महोत्सव पर हमारा फोकस इसलिए है कि महाराणा प्रताप ने दिवेर पर जो विजय प्राप्त की, वह विजय जैसे एक प्रकार की निर्णायक विजय थी। 1585-86 के बाद 1597 में जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ, ऐसे 10-12 सालों तक फिर कोई युद्ध नहीं हुआ। चावंड में राजधानी बनाकर प्रताप ने शासन किया पूरे मेवाड़ का। तो ये जो 10-12 साल हैं वो शांति का लाया कैसे, उसके लिए दिवेर का युद्ध का वर्णन, और उसकी उसकी जो कहते हैं ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी, स्ट्रेटेजिक विजय थी, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो हम दिवेर विजय महोत्सव के नाम से कार्यक्रम करते हैं। 2 वर्ष पहले उस कार्यक्रम में हमने एक ऐप के थ्रू एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया था। एक 100 प्रश्नों का एक पेपर था जो ऑनलाइन आपको देना था, 1 घंटे का समय था। आपको आश्चर्य होगा कम हमने उसके लिए जो बुक प्रसारित की थी वो भी ऑनलाइन ही प्रसारित की थी। उस बुक को प्रसारित करके 100 प्रश्नों के उत्तर देते हुए लगभग 20 बच्चे ऐसे थे जिनके 100 में से 100 अंक आए थे, यानी 100% अंक आए थे। और आश्चर्य की बात कीजिए, 30,000 लोगों ने उस ऐप के माध्यम से उस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया था। तो ऐसे अनेकों प्रकार के हम बच्चों के बीच में जाके प्रबोधन के काम भी करते हैं। हम महाराणा प्रताप से जुड़े हुए प्रसंगों को, देश से जुड़े हुए प्रसंगों को, मेवाड़ से जुड़े हुए प्रसंगों को लेकर समय समय पे कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, और उनको उनको प्रताप के बारे में बताते हैं। तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम हम करते ही हैं, कर ही रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि इवेंट तो बहुत सारी हैं। मैं इसे कुछ छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है।
1: सक्सेना जी, अगर बात की जाए तो प्रताप गौरव केंद्र एक केंद्र में एक ऐसी संस्था है जो प्रताप के जीवन दर्शन से जुड़ी हर एक जानकारी रखता है और लोगों को जागरूक भी करता है। जब हम जानते हैं कि जब कभी विश्वविद्यालय हुआ, स्कूल हुआ, विद्यालय स्तर पर साथ साथ एक शैक्षणिक टूर भी हुआ करते हैं, लेकिन जब मेवाड़ में बैठे हैं और मेवाड़ में प्रताप से जुड़े वह सभी स्थल आते हैं, चाहे वो राजतिलक का स्थान हो, मायरा की गुफा हो, कुंभलगढ़ दुर्ग हो, दिवेर हो, हल्दीघाटी हो, चावंड हो, ये सारे, तो क्या जो शोधार्थी और जो लोग यहाँ पर प्रताप के अध्ययन के लिए आ रहे हैं, क्या उन्हें इन स्थानों पर भी लेके जाया जाता है और क्या उससे जुड़े भी कुछ शैक्षणिक भ्रमण जैसा कुछ कार्यक्रम भी आपके द्वारा संचालित होता है?
0: जो लोग भी इन स्थानों पर आते हैं उनको हम हमारी ओर से प्रयास पूर्वक प्रताप गौरव केंद्र लाने का प्रयास करते ही हैं। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में नियमित रूप से हमारे जो ब्रोशर्स हैं, हमारी जो डिटेल्स हैं वो भी जाती हैं। सोशल मीडिया पे भी हम बहुत प्रभावी रूप से काम करते हैं, लगातार हमारी न्यूज़ का, हमारे काम करने के जो भी इवेंट्स हैं, हमारे जो जो भी नई हमारे एडवांसमेंट होते हैं उनकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी उपलब्ध रहती है। हमारी वेबसाइट भी नियमित रूप से अपडेट होती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि लगातार हम लोगों के संपर्क में बने रहते हैं, और ये जो सभी स्थान हैं उन पर भी हमारे लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ जो आने वाले लोग हैं वो हमारे यहाँ भी आएँ।
1: अगर आने वाले समय की बात की जाए तो प्रताप गौरव केंद्र को लेकर, उसके विस्तार को लेकर आपकी क्या योजना है और किस तरह से आप उस ओर अग्रसर हैं ताकि इसके कार्यक्षेत्र को और इसके विस्तार को बढ़ाकर एक नई पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ खड़ा किया जा सके?
0: देखिए, प्रताप गौरव केंद्र के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, मैंने कहा, प्रताप के जीवन को जन जन तक पहुंचाना। दूसरा, प्रताप और मेवाड़ के बारे में जो अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं, मिथक हैं,

दूर करना और प्रताप गौरव केंद्र को विश्व स्तरीय केंद्र बनाना। तो इन सब बातों को लेकर हम काम कर रहे हैं। कुछ काम एकेडमिक लेवल पर होता है, कुछ काम शोध के स्तर पर होता है, कुछ काम हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं और कुछ काम ऐसा है जिसको हम समाज के सहयोग से करते हैं, अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। तो ये सब ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके नाते हम प्रताप गौरव केंद्र को एक विश्व स्तरीय केंद्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम आने वाले समय में कई सारी हमारी योजनाएं हैं। हमारा हम एक कन्वेंशन सेंटर भी वहाँ डेवलप करना चाहते हैं कि वहाँ इस इतिहास से जुड़े लोग, देश से जुड़े लोग, समाज की गतिविधियों में समाज के लिए काम करने वाले लोग वहाँ आएँ, अपनी अपनी गतिविधियाँ आयोजित करें। हमारे यहाँ एक बड़ा जो थिएटर बनने वाला है, ओपन एयर थिएटर, जिसमें आप आएंगे, एमपी थिएटर जिसको बोलते हैं, जिसमें आप कोई अपने नाटकों की प्रस्तुति कर सकते हैं, अपने छोटे कार्यक्रम कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ दो ऑडिटोरियम हैं जिनमें समाज से जुड़े हुए लोग उसमें निरंतर उसका उपयोग भी करते रहते हैं। इसके

0: अपनी गतिविधियां आयोजित करें। हमारे यहाँ एक बड़ा जो थिएटर बनने वाला है, ओपन एयर थिएटर, जिसमें आप आएंगे, एमपी थिएटर जिसको बोलते हैं, जिसमें आप कोई अपने नाटकों की प्रस्तुति कर सकते हैं, अपने छोटे कार्यक्रम कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ दो ऑडिटोरियम हैं जिनमें समाज से जुड़े हुए लोग उसमें निरंतर उसका उपयोग भी करते रहते हैं। इसके अलावा भी पर्यटन को लेकर, अन्य प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर, शोध को लेकर हम अनेकों गतिविधियां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आगे की योजना बहुत अच्छे ढंग से हमने विचार किया हुआ है, एक मास्टर प्लान है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम प्रताप गौरव केंद्र पर एक बड़ा धन संग्रह अभियान भी शुरू करेंगे, क्योंकि प्रताप गौरव केंद्र की तो एक एक ईंट जोड़कर हमने इसको बनाया है, और आगे भी हम एक स्वाभिमान की ईंट घर घर इसका प्रचार करके लोगों से के पास जाएंगे, और इसको और आधुनिक और सुंदर और भव्य बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे।
1: जाते जाते कार्यक्रम में, क्योंकि आगामी कुछ दिवस में प्रताप जयंती आने वाली है, और प्रताप जयंती को लेकर प्रताप गौरव केंद्र पर होने वाली विभिन्न गतिविधियां या कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें।
0: इस वर्ष बहुत आनंद का विषय है कि हल्दीघाटी विजय को 450 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 2025 में जब ये वर्ष शुरू हुआ तो हमने हल्दी घाटी से एक बड़े यज्ञ के माध्यम से एक हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा, जिसमें लगभग 150-200 वाहन थे, वो सभी लोग पूरे मार्ग पर घूमते हुए पूरे उदयपुर शहर में 100 से ऊपर स्वागत द्वार बनाए गए, कम से कम 40-50 जगहों पर बड़ा स्वागत हुआ, और इस प्रकार एक वो संदेश यात्रा प्रताप गौरव केंद्र पर आकर रुकी। इस प्रकार उस यात्रा के माध्यम से हमने एक संदेश दिया कि हल्दीघाटी विजय को लेकर हम सब लोग खड़े हों और समाज मिलकर कहे कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे, इस विमर्श को स्थापित करने के लिए। तो उस दृष्टि से साल भर में हमने कई एकेडमिक कार्यक्रम किए, कई रिसर्च प्रोग्राम भी किए, कई प्रकार के हमने जो भी अन्य संस्थाएं थी, अन्य विश्वविद्यालय थे, या जो भी इस प्रकार की संस्थाएं जो पाठ्यक्रम निर्माण करती हैं, उन्हें अनेकों प्रकार के ज्ञापन दिए, उनको ये समझाने का प्रयास किया कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ अकबर का युद्ध अनिर्णित नहीं हुआ था, ना महाराणा प्रताप हारे थे, वास्तव में इस युद्ध में हर दृष्टि से वो विजयी हुए थे। और धीरे धीरे करके इस विषय को लोगों ने समझना, स्वीकार करना भी शुरू किया है। अभी इस वर्ष हल्दीघाटी युद्ध का वो जो विजय दिवस है 18 जून को होने वाला है, संयोग से इस बार महाराणा प्रताप जयंती भी 17 जून को है, एक दिन पहले ही है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तो ये दोनों काम निकट निकट आ गए थे, तो हमने विचार किया कि एक ही स्वरूप में उस कार्यक्रम को किया जाए, और 17 जून को हमने वो कार्यक्रम निर्धारित किया है जो 2 दिन बाद आने वाली है। सुबह 9:30 बजे यहाँ के प्रसिद्ध गांधी ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत आने वाले हैं, और उनके माध्यम से पूरे देश के ऐसे बड़े विद्वान लोगों को हमने आग्रह किया है कि आप भी कार्यक्रम में आएं। काफ़ी सारे लोगों ने अपने हमको सहमति भी प्रदान की है। यहाँ दक्षिणी राजस्थान के लगभग, मैं समझता हूँ, 25-30 हज़ार लोग आने वाले हैं। हम 2 लाख लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 2 लाख घरों तक पहुँचेंगे और वहाँ हम अपना संदेश देंगे, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे, महाराणा प्रताप का जीवन क्रम क्या है, ऐसी सारी बातों की जानकारी जो हमारी नई पीढ़ी भूलती जा रही है, पुरानी पीढ़ी का भी विस्मरण हो रहा है, तो उस सब की जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, उनसे कार्यक्रम में आने के लिए आग्रह करेंगे। और 17 जून को एक विशाल कार्यक्रम गांधी ग्राउंड में होने वाला है। अब इस कारण से प्रताप जयंती के कार्यक्रम को भी उसी में हमने मर्ज किया है, तो अगले वर्ष कुछ और नई योजना के साथ हम आएंगे, लेकिन इस वर्ष कोई बहुत बड़े प्रताप जयंती के बड़ी संख्या में कार्यक्रम नहीं है। हाँ, कुछ पारंपरिक कार्यक्रम हम हर वर्ष करते हैं, जैसे हमारे यहाँ 57 फुट की जो भव्य प्रतिमा है उसका दुग्धाभिषेक, वो दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम भी कल शाम को 6 बजे प्रताप गौरव केंद्र में संपन्न होने वाला है। मैं आप सबके माध्यम से सभी श्रोताओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि न केवल 17 जून को होने वाले भव्य सार्वजनिक सभा में परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत को सुनने के लिए आए, बल्कि 16 जून की शाम को भी ये जो महाराणा प्रताप की सुंदर मूर्ति है जो प्रताप गौरव केंद्र पे लगी है 57 फुट की, उसको भी दुग्धाभिषेक कराने के लिए आप अवश्य आए।
1: तो आप थे कार्यक्रम में अनुराग सक्सेना जी, निदेशक प्रताप गौरव केंद्र, और आज प्रताप गौरव केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हृदय से आभार।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें मुलाकातें, जिसमें आज के हमारे मेहमान थे निदेशक प्रताप गौरव केंद्र अनुराग सक्सेना जी, जिनसे बात कर रहे थे गजेंद्र सिंह राठौर।
1: श्रोताओं।

101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी, शाम के इवनिंग लोकल विंडो के प्रोग्राम्स आप सुन रहे हैं। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोता लीजिए, सुनिए फिल्म संगीत में अगला गीत, एक बार फिर आर्य बर्मन के संगीत से सजा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में, फिल्म घर से।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
8: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
9: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
10: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
11: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
12: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
12: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
13: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
14: जमीन आसमान, ये है अगली फिल्म जिसे आपको सुनवा रहे हैं। ये गीत आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आर डी बर्मन का।

ज़मीन आसमान के इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। श्रोताओं, आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा विविध भारती मुंबई से, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम जय माला।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। हमारे सभी फौजी साथियों और सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।

किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म कटी पतंग में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था राहुल देव बर्मन का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला।

0: महबूब की मेहंदी इस फिल्म का गीत था किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। अपने सभी फौजी साथियों का एक बार फिर हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। एस एच बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने। जयमाला कार्यक्रम की यही थी श्रोताओ आखिरी पेशकश। आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आ गए सैलरी?
3: हाँ।
2: आ? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
8: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म के नफ में।

ये दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में हसर जयपुरी के बोल थे। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, फिल्म थी तेरे घर के सामने। और आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आपको हम सुनवा रहे हैं इसी फिल्म के नगमे।

सचिन देवर्मन की तर्ज हसरत जयपुरी के बोल मोहम्मद रफी की आवाज आप सुन रहे थे तेरे घर के सामने। इस फिल्म का गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम श्रोताओं अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए तेरे घर के सामने इस फिल्म के नगमे।

आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। तो आइए सुने झलकी नीम हकीम।

0: ये दर्द तो मेरी जान लेकर ही रहेगा।
1: ये दर्द ना हुआ आफत हो गई। मैं पूछती हूँ जी, ये हाय हाय करके सारा घर को सिर पर उठा रखा है। कसम से कहती हूँ, इस दांत को निकलवा क्यों नहीं देते?
0: क्या मतलब?
1: लो अब इन्हें मतलब समझाओ। देखो जी, तुम्हारी जगह अगर मेरे दांत में दर्द होता तो कब का निकाल देती?
0: ठीक कहती हो भगवान, मैं भी यही कहता हूँ।
1: क्या कहती हो?
0: यही कि मेरी जगह अगर तुम्हारे दांत में दर्द होता तो मैं भी कब का निकलवा देता।
1: तो मेरा दांत तो तुम निकलवाने को तैयार हो, और अपना दांत ही जो दर्द कर रहा है क्यों नहीं निकलवा देते? हाय हाय करके मेरे सर में दर्द कर दिया।
0: भाई मेरी तो हिम्मत होती नहीं। हे भगवान, उसे देखा था सुगत को, जब उसने अपना दांत निकलवाया था उसका मुंह कैसा सूज गया था।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये जो हाय दर्द कहकर और चिल्ला चिल्ला कर मेरी बेइज्जती करवा रखी है, उसका क्या करूं?
0: क्या मतलब? यानी कि मेरी हाय हाय करने से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है देवी जी?
1: ओहो, पड़ोस ने जाने क्या सोचती होंगी कि पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह सुन रही हूँ जो तुम चिल्ला।
0: लेकिन मैं, हाय मेरा दांत।
1: सुनो जी, मैं जब छोटी थी तो मेरा भी एक बार दांत दर्द हुआ था। उस वक्त मेरी नानी जी ने मेरे दांत के नीचे देसी घी का गर्म रुई का फोया रखा था।
0: फोया?
1: हाँ जी, रुई को गर्म देसी घी में भिगो कर दांत के नीचे रखा। कसम से कहती हूँ, मेरे दांत का दर्द एकदम ठीक हो गया था।
0: तो वही लाओ ना भगवान, मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही है।
1: अरे वही तो लाई हूँ। लो ये कटोरी में गर्म घी और ये रुई का फोया, लो ये मुँह में रखो। खोलो मुँह, ये लो। क्या हुआ भगवान? ये पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। अरे क्या बात है, घी क्या ज्यादा गर्म था?
0: गर्म? ओहो, दांत के साथ सारा मुंह भी जल गया।
1: बाप रे, भगवान ने क्या?
0: कुछ भी नहीं खाया, खाली दूध पीकर गुजारा कर रहा था। अब तो दूध भी कैसे पिया जाएगा?
1: तो तुमसे किसने कहा था कि जल्दी से मुंह खोल दो? घी गर्म था तो थोड़ी देर ठहर जाते।
0: तुमने नहीं कहा था कि मुंह खोलो?
1: सुनो जी, एक बार और मेरे दांत में दर्द हुआ था।
0: अच्छा फिर?
1: कसम से कहती हूँ, मेरी दादी जी घर पर आई हुई थी, बस उन्होंने फिटकरी जलाकर और गर्म पानी में घोलकर मुझे जो कुल्ले कराए और बस।
0: फिर?
1: मेरे दांत का दर्द फौरन गायब।
0: तो क्या फिर अब मुझे भी कुल्ले करवाओगी?
1: हाँ जी, मैंने फिटकरी जलाकर रखी है और पानी गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है, अभी लाती हूँ। कौन? आती हूँ। कांता बहन आओ। बहन आओ।
2: क्या बात है शांति बहन, क्या भाई साहब की तबीयत कुछ खराब है?
1: हाँ बहन, क्या बताऊँ, इनके आज सुबह से दांत में बहुत दर्द है। कसम से कहती हूँ, मेरे तो नाक में दम आ गया है।
2: क्या, दांत में दर्द? बहन मेरी मानो तो लौंग का तेल लगाओ। हमारी उनके भी एक बार दांत में दर्द हुआ था।
1: हाँ।
2: मैंने लौंग का तेल लगाया, फौरन ठीक हो गया।
1: अच्छा, लौंग का तेल मगर यहाँ मिलेगा कहाँ?
2: मैं देखती हूँ, घर में शायद बचा हुआ पड़ा हो।
1: बड़ी मेहरबानी होगी बहन।
2: मेहरबानी की क्या बात है?

0: बहन आए आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, मैं अभी लाती हूँ।
1: ठीक है।
2: मैंने कहा जी लो ये गर्म पानी में फिटकरी घुली रखी है, लो कुल्ले कर लो।
3: पानी पानी गर्म तो नहीं है,
2: देख लो ना।
3: हाँ ठीक है, मेरा तो मुंह ना जाने कैसा कैसा हो गया।
2: अजी मुंह तो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, मैं कहती हूँ कुल्ले करो।
3: अच्छा ठीक है।
0: लो शांति बहन, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिली है, मैं रुई पर ही लगा लाई हूँ। अब ये रुई तुम मुंह में रख दो, ठीक हो जाएंगे। मैं जाती हूँ, सारा काम पड़ा है, जाके बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी साफ करने हैं।
2: सुनो जी, ए जरा ये रुई मुंह में रख लो, ये मुंह खोलो।
3: मगर ये फिटकरी का पानी,
2: ये बाद में कर लेना, तुम मुंह तो खोलो।
3: लो ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो?
2: अजी अब क्या है?
3: भगवान साहब तुम भाई साहब तुमने चाय साहब रखी है।
2: ओहो तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
3: बताता कैसे देवी जी, तुमने रुई से तो सारा मुंह बंद कर दिया था। खैर मैं खुद ही रख लेता हूँ। ऐसे मर गया, मर गया।
2: ओ अब क्या हो गया?
3: मेरी तो जान ही निकल गई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तेजाब।
2: ओहो मेरी मानो तो डॉक्टर के पास चलो।
3: डॉक्टर के पास?
2: इस मुंह में दांत को निकलवाना ही होगा।
3: मगर
2: अगर मगर कुछ नहीं जी, चलो डॉक्टर के पास
3: चलो। हाय मैं मरा, हाय हाय हाय मर गया रे।
4: नमस्ते डॉक्टर साहब।
5: नमस्ते। हाँ तो कौन से दांत में तकलीफ है?
4: देखिए डॉक्टर साहब, ना मैं सुई लगवाऊंगी और ना सुन करवाऊंगी, बस हम बहुत जल्दी में हैं, जल्दी से आप दांत निकाल दीजिए।
5: कमाल है, आप तो बहुत बहादुर और हिम्मत ही लगती हैं। कौन सा दांत है?
4: चलो जी आगे बढ़कर अपना दांत दिखा दो।
5: क्या आप? ये आइए आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए।
3: मगर डॉक्टर साहब दांत निकलवाने में ज्यादा दर्द तो नहीं होगा?
5: बिल्कुल नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। नर्स।
6: यस डॉक्टर।
5: जरा मेरे औजार तो देना।
6: ओके डॉक्टर। ली डॉक्टर।
3: क्या डॉक्टर साहब आप इससे मेरे दांत निकालोगे?
5: हाँ हाँ क्यों?
3: मर जाऊंगा डॉक्टर साहब, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा।
5: लगता है आप बहुत डर रहे हैं।
3: देखो देवी जी मेरा तो सर घूम रहा है।
4: कोई बात नहीं,
3: बड़े बड़े औजार देखने में डरावने लग रहे हैं।
4: कोई बात नहीं,
3: ये डॉक्टर इनसे ही मेरा दांत निकालेगा।
4: अजी मैं कहती हूँ तकलीफ भी तो दूर हो जाएगी, आज सुबह से ही तुमने सारा घर सरवर उठा रखा है।
5: तो आप तैयार हैं दांत निकलवाने के लिए?
3: क्या मतलब, मैं देखता हूँ कौन मेरे दांत को हाथ लगाता है।
5: ये क्या कहते हो?
4: अजी मैं कहती हूँ दांत नहीं निकलवाना। क्या?
3: नहीं बिल्कुल नहीं।
5: ये बैठे बिठाए क्या हुआ? ए हजरत दांत निकलवा लो।
3: बस खबरदार जो दांत का नाम भी लिया तो।
4: अजी तुम्हें क्या हो गया है, दर्द तो दूर हो जाएगा, अब दांत निकलवाओ।
3: हरगिज़ नहीं, मेरे दांत के पास आने की जरूरत भी की तो? चलो घर, फौरन घर चलो, मेरा दांत अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: लेकिन दांत?
3: हम घर जाकर अपना घरेलू इलाज करेंगे मगर दांत नहीं निकलवाएंगे।
4: अच्छा चलो।
5: भाई भाई मेरे दांत तो सुनो, मेरी फीस। भाई साहब सुनिए।
4: अजी मैं कहती हूँ उठना है कि नहीं? आए लो ये तो मजे में सोने लगे, अरे उठो ना।
3: क्या?
4: एक कसम से कहती हूँ जब से डॉक्टर के पास से आए हो सो ही रहे हो, लो चाय पी लो।
3: मगर पियो कैसे, मेरी तो दांत के दर्द से जान निकलने लगी है।
4: ओहो अभी तो चैन से सो रहे थे, डॉक्टर के पास गए भी और दांत क्यों नहीं निकलवाया, अब मैं क्या करूं?
3: ऐसा करो ये चाय तुम पी लो, मेरे तो दर्द। ओफ
4: हे भगवान, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब चाय भी नहीं पी रहे, मैं क्या करूं?
0: क्यों बहन शांति, अब कैसा है तुम्हारे इनके दांत का दर्द?
4: क्या बताऊं बहन, इनका तो खाना पीना भी बंद है।
0: अरे ये दर्द भी तो जानलेवा होता है, तुम ऐसा करो।
4: हाँ।
0: इनके जिस दांत में दर्द है ना,
4: हाँ।
0: उसके नीचे ये पत्ते दबवा दो। अच्छा। फौरन ठीक हो जाएगा।
4: अच्छा कैसे पत्ते हैं?
0: एक बार मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तब मेरी माँ ये पत्ते लाई थी।
4: हाँ।
0: मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया था। तो फिर आऊंगी पता करने, सारा घर का काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है।
4: लो जी ये पत्ते मुंह में रख के देख लो।
3: बड़ा अजीब सा टेस्ट है इनका तो।
4: अभी ठीक हो जाएगा, घबराओ मत।
7: कमाल है, मुझे तो कांता ने बताया कि तुम्हारे इनके दांत में दर्द है।
0: अरे हाँ
7: आ आ आ की आवाज तो आ रही थी, मैंने समझा शायद भाई साहब रोजाना की तरह रियाज कर रहे होंगे।
4: नहीं बहन ये गर्म पानी के कुल्ले कर रहे थे।
7: अरे हाँ शक तो मुझे भी हुआ था कि आज रियाज कुछ लंबा हो गया।
4: हाँ बहन इनको

0: बहुत तकलीफ है।
1: अरे हाँ, दांत में कुछ लगाया है?
0: अरे सभी कुछ तो लगाया, जिसने जैसा कहा वैसा ही किया।
1: कमाल है, तुम ऐसा करो, ये लहसुन लो, मैं छील कर लाई हूँ, तुम फौरन जिस जगह दांत में दर्द है उसके नीचे दबा दो।
0: लेकिन मगर...
1: अरे लेकिन वेकन को छोड़ दी। ले कमाल है, मीतू बहन भी आ गई। अरे आना आ मीतू।
2: आज मैंने भी सुना था कि इनके पति के दांत में दर्द है, मैंने कहा पड़ोसन के नाते।
1: बहन ये तो हमारा फर्ज है।
2: मेरी बात सुनो बहन। हाँ। वो लहसुन मुँह से निकलवा कर ये मैं जो दवा रुई में लाई हूँ ना। हाँ। ये रख दो, फिर देखना।
0: लेकिन
2: लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहन। एक बार मेरी माँ के दांत में दर्द हुआ था, तब डॉक्टर ने ये दवा दी थी, बस एक बार लगाई, आज पूरे 5 साल हो गए हैं। मजाल है उनके दांत में फिर दर्द हुआ हो।
1: लेकिन लहसुन तो कोई बुरी चीज नहीं है रे।
2: अरे तो इस दवाई को भी आजमाने में क्या हर्ज है?
1: अरे कमाल है, देख लेना बहन, कहीं 19-20 ना हो जाए। हाँ।
2: मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? फिर डॉक्टर की दी हुई दवा है, ऐसी वैसी तो होगी नहीं।
0: लड़ने की क्या जरूरत है, लाओ मैं ये भी उनके मुंह में अभी रखे देती हूँ।
1: अरे कमाल है, अच्छा मैं तो चलती हूँ।
2: मैं भी चलती हूँ।
0: ये तो हमारी किस्मत है कि इतना अच्छा पड़ोस मिला है।
2: अरे मेहरबानी कैसी बहन, दुख सुख में पड़ोस को ही तो काम आना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ।
1: अरे आ भी जा मीतू अब।
2: हाँ बहन रमा चलो अब।
3: हाय राम रे, ओ हाय राम रे, मर गया।
4: दुखी राम जी।
3: कौन है भैया?
4: दुखी रामा।
3: आओ भाई हिदायती राम आओ।
4: असलाम खुशी रामा, की हाल है? ओ यार एक ही है, मुंह लटका के बैठा है।
3: अरे मेरे दांत में दर्द हो रहा है भैया।
4: ओए की होया तेनू दर्द?
3: हाँ दांत में दर्द है।
4: और कुछ दसेंगे भैया? हाय हाय हाय लगा रहे हैं।
0: ये कैसे बताएं भाई साहब? हाँ। इनके दांत में बेहद दर्द है, सब इलाज करके देख लिया, कुछ बनता ही नहीं।
4: बस कमाल है भाई जी। जरा जी बात पीछे इतना हंगामा खड़ा कर लिया।
0: जरा सी बात? अरे भाई साहब सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, जिसने जैसी दवा बताई वैसा ही किया,
4: मगर फायदा नहीं होया। हो भी कितना सकता है प्रजाय जी, कुछ नुस्खे होंगे ना, नुस्खे जो सिर्फ किसी किसी को मालूम होंगे ने। ओए ठहर जा ठहर जा। ओए ओए गल सुन, ओए दुखी रामा ठहर जा, होनी तन्ना आ ले ले आ ले ए आ रगड़ दे ना ए आ फल आ शाबाश ले ले ले ले। ओ तेरी किस्मत चंगी है, असि इत्थे आ गए हैं। हां
0: तंबाकू?
4: हां हां
3: मगर इससे क्या होगा?
4: ओए पूछ के ये देना होएगा कि नहीं।
3: अरे
4: और तू भी यार अजीब आदमी है। वेखो देख, दांत च दर्द उदो हुंदा है जो दांत च कीड़ा लगा होवे।
3: कीड़ा?
4: हाँ कीड़ा। कीड़ा भी उदो लगदा है जद मिठा खादा होवे। ओ तू जरूर मिठा खादा होना है।
3: यार कल मैंने लड्डू खाया था।
0: मगर तुमने लड्डू कब खाया जी?
3: अरे भगवान, दफ्तर में कांता ने अपनी शादी की खुशी में बांटे थे।
4: ए तम्बाकू दांदे थल्ले रख ले ते कीड़ा मर जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा।
3: मगर
4: छाटो और मुंह दे अंदर ना जान दी थी। हाँ शाबाश,
0: दर्द ठीक हो जाएगा जी।
3: मुझे
4: जी,
3: मुझे
4: 5 मिनट लगेंगे।
3: चक्कर आ रहा है।
4: चक्कर आएगा, ओए दंद दे कीड़े नु भी चक्कर आएगा, ओ नटन ले बाहर आएगा। ओए ओए ओए ओए ओ गा सुन, ओ दुखी रामा, ओ ओ इसके हम ले रहे हैं। ओ ओ हो हो हो, ओए ओए की होया तनु?
3: दांत बाहर गिर गया।
0: दिखाओ तो, अरे अपना मुंह तो खोलो।
4: दांत बाहर निकल गए।
3: दांत में दर्द था वो भी, और उसके पास वाले दो दांत भी बाहर।
0: अरे दिखाओ तो सही क्या हुआ?
4: ओए दांत निकल गए सारे।
3: उसके साथ सारे भी दांत बाहर गिर गए।
4: कितने दांत?
3: दो।
4: दो निकल गए?
3: हां जी।
4: गया ना?
3: ओए दो।
1: दिखाओ तो, हद हो गई, दांत भी गया और दर्द भी गया। हाय हाय चिल्ला रहा था रात से। अब चलो सब और से तो

0: हवा महल में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ

0: चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तेरा जवाब नहीं
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर

0: हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
4: अच्छा।
3: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: हम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
12: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
13: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
14: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
13: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
15: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
16: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
15: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल, गणेश चंदन शिव और मुश्तबा अजीज, नाजा की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा, नासिर फराज और गणेश चंदन शिव के बोल थे, शैल प्रतेश, नितिन शंकर की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। फिल्म अशोका, चित्रा की आवाज। गुलजार का लिखा यह गीत है, अनु मलिक का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने

0: कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
2: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाश

0: उन्हीं समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

पत्थर के सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। फिल्म जंगली, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

राजा जानी फिल्म का गीत था लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

धरती कहे पुकार के आप सुन रहे थे इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: एन दत्ता की तर्ज थी साहिल ध्यानवी का लिखा ये गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म धर्मपुत्र से। और इस गीत के पहले श्रोताओ हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जय हिंद। पिछले 1 दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
3: ऐसी अनमोल यादें आपको

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल नादा तुझे हुआ क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रही।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात यह है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
8: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
9: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

संगीतकार नौशाद ने जब अपनी शास्त्रीय शैली को छोड़कर बनाया बिल्कुल मॉडर्न गाना, तो उसे गाया मोहम्मद रफी और सुरैया ने।

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर।

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साये में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

मेहरबान है जवानी और कुछ उम्र का भी तकाजा है, हमारी मदहोशी के बारे में जमाने का तो यही अंदाजा है।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: बेरुखी का आलम है, इजाजत नहीं है मोहब्बत की, बेसब्र दिल को इंतजार तो करना होगा, गुलों पे बहार आने का, कली के फूल बनने का इंतजार तो करना होगा।
1: ये कली जब

न रहा वो गुलशन, अब वो हवा भी तो नहीं है। समा गई है कायनात इस दिल में, हमारी ये दास्तां भी तो नहीं है।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वर्जदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: रात के 11 बजने के हैं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे पहले हिंदी में फिर उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ

FMN 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, रात के 11 बज चुके हैं, 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।

FMN 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, रात के 11 बज चुके हैं, 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।